0: TIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जीवन में सुख कितना मिला ये मत गिनिए, बल्कि ये देखिए कि आपके कारण कितने दिलों में मुस्कान आई, यही सच्ची कमाई है। श्रोताओं, ये सुविचार भेजा था आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। मोताला महाराष्ट्र से रतनमाला सुरलकर, विजय सुरलकर जी लिखते हैं, ज्ञान शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर उमंग कार्यक्रम सुनना अब हमारी आदत बन चुका है। प्रत्येक प्रस्तुति कुछ नया सीखने का अवसर देती है और सामान्य ज्ञान में निरंतर वृद्धि करती है। उपयोगी जानकारी, रोचक विषयों और उत्कृष्ट प्रस्तुति के कारण ये कार्यक्रम श्रोताओं के लिए सचमुच प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। विमलेश जी, अजीत जी और उमंग की पूरी टीम को इस सराहनीय प्रयास के लिए हार्दिक बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और वारिस अली खान, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, तहसील ठियोग जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी, आप सबके सुंदर संदेशों के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं ये भी जानिए श्रृंखला में हर दम हम आपके लिए लेकर आते हैं रोचक जानकारियाँ, विचार विमर्श और प्रेरक प्रसंग। इस सप्ताह हम फिर से आपके लिए लेकर आ रहे हैं कई प्रेरक प्रसंग। आज हम अपने उमंग कार्यक्रम के प्रिय श्रोताओं के लिए एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया। इस कहानी का संदर्भ एनसीईआरटी की कक्षा 6 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 में संदर्भित है। जरा अंदाजा लगाइए श्रोताओ, मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरुणिमा सिन्हा की, भारत की उस साहसी महिला की जिसने अपना एक पैर खोने के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। आइए जानते हैं कौन है अरुणिमा सिन्हा, आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की खिलाड़ी थीं। उनका जीवन खेल, सपनों और आगे बढ़ने की उम्मीदों से भरा था, लेकिन वर्ष 2011 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 11 अप्रैल 2011 की बात है, वो CISF की परीक्षा देने के लिए ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं। कुछ बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट करने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें इसी दौरान चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वे रेलवे ट्रैक पर गिर गईं और दुर्भाग्य से दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका एक पैर काटना पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल में पड़े पड़े उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को यूं ही समाप्त नहीं होने देंगी। अरुणिमा के सामने कठिनाइयां कम नहीं थीं। उन्हें कृत्रिम पैर लगाना था, उन्हें फिर से चलने का अभ्यास करना था। धीरे धीरे वे चलना सीख गईं और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। शरीर में दर्द था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो ऐसी परिस्थिति में एक आम इंसान नहीं ले सकता। उन्होंने पर्वतारोहण सीखने का निर्णय लिया। शायद वे दुनिया के सामने ये साबित करना चाहती थीं कि दुर्घटना ने उनका शरीर बदला है, लेकिन उनके मनोबल को नहीं। फिर क्या था श्रोताओ, उन्होंने प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल से संपर्क किया और प्रशिक्षण शुरू किया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी फिर से चलना सीख रहा था, वो पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। प्रशिक्षण आसान नहीं था, कृत्रिम पैर के साथ चलना, चढ़ना, गिरना और फिर उठना, हर कदम एक चुनौती था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार आ ही गया वो दिन। उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया।

और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया, और वो भी एक पैर खोने के मात्र 2 साल बाद। श्रोताओं, हम तो कहना चाहेंगे कि वहां पहुंचकर उन्होंने केवल एवरेस्ट पर विजय नहीं पाई थी, उन्होंने

0: हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाई आने के बाद भी जीवन आगे बढ़ सकता है। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। आप हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। ताजी जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को लगातार फॉलो करें। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है छुपन छुपाई। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम मनोरंजक ढंग से इस पारंपरिक खेल के बारे में बताता है।
1: चलो चलो चलो चलो छुपन छुपाई खेलते हैं।
2: छुपन छुपाई बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
3: एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे।
4: लेकिन डाइन कौन देगा?
5: जी, हर बार मैं ही डाइन देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ।
3: उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला।
5: 1, 2, 3 सब छुप गए ना? 98, 99, 100 लगता है सब छुप गए। चलो अब मैं ढूंढता हूँ सबको। अरे इधर तो कोई भी नहीं है। दरवाजे के पीछे देखता हूँ, यहाँ पक्का कोई ना कोई छुपा होगा।
3: मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया।
6: मोहित, अरे नहीं, हर बार मैं ही सबसे पहले पकड़ा जाता हूँ।
3: जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा।
5: अब मैं कमरे में देखता हूँ, लगता है अलमारी के पीछे कोई छुपा है।
3: बबली अलमारी के पीछे मिल गई।
5: बबली तुम अलमारी के पीछे हो?
6: धप्पा!
5: मोहित और बबली दोनों आउट हो गए।
3: मारिया पलंग के नीचे मिल गई।
5: मारिया तुम पलंग के नीचे हो?
7: नहीं, मैं पलंग के नीचे नहीं हूँ।
6: अंदर छुपा।
5: मारिया
6: धप्पा!
7: अरे नहीं।
3: उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई।

0: पीछे छुपी हुई है, अभी जाके देखता हूँ। और ये गया, ये
1: पकड़ लिया।
0: अब बची है नाजिया, कहाँ हो सकती है?
2: जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा।

0: यहाँ तो नहीं है, पेड़ के पीछे देखता हूँ, इधर भी नहीं है। अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वो पेड़ के नीचे

0: पीछे खड़ा होकर सोचने लगा।
1: अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
0: नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया।
1: जी धप्पा!
2: ओ, ओ, अरे नहीं, मेरी फिर से बारी आ गई।
0: जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया।
1: एक दो तीन।
3: छुपन छुपाई है ना मजेदार खेल। तो बच्चों अब सोचो और जरा बताओ कि छुपन छुपाई खेलते समय तुम अपने घर में कहां कहां छिप सकते हो, और यदि खेलते खेलते चोट लग जाए तो तुम क्या करोगे। और हाँ ये भी मालूम करो कि कौन कौन से खेल हैं जो घरों में खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल हैं जो बाहर खेले जाते हैं।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छुपन छुपाई। छुपन छुपाई के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम छुपी प्रतिभा। इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि हर बच्चा अनोखा है और उसमें बहुत सी प्रतिभाएं छुपी होती हैं। जरूरत है उन प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने की।
5: साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी दी थी जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। हमने खासकर उन बच्चों के विषय में चर्चा की थी जिनकी भिन्नता छोटी उम्र में ही नजर आ जाती है, पर उनमें से अधिकांश देखने में और बच्चों के समान ही लगते हैं और उनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि इन बच्चों को पढ़ाई, सामाजिक एवं शारीरिक गतिविधियों में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और अध्यापक गण उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं जिससे कि ऐसे बच्चों का जीवन बेहतर और सार्थक हो सके। तो आइए आज चलते हैं एक स्कूल में। इस स्कूल के शिक्षक बच्चों के विकास में गहरी रुचि रखते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो आखिर क्यों, उसकी क्या समस्या है और कैसे उस बच्चे की मदद की जा सकती है। साथियों, इस स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक विकलांगता के शिकार हैं, तो शिक्षकों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों की समस्याओं के विषय में किसी डॉक्टर की राय ली जाए, और इस अवसर पर इन बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए ताकि इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाए और यथासंभव उनका समाधान भी खोजा जाए। और एक दिन
6: साथियों, आज मैं पूरे स्कूल की ओर से डॉक्टर पुष्पा का स्वागत करता हूँ।
7: आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद।
8: नमस्कार।
6: आपका धन्यवाद डॉक्टर पुष्पा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, और हम आशा करते हैं कि आपके परामर्श और विस्तृत अनुभव का हम सबको अवश्य लाभ मिलेगा कि हम अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। और साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं अपने विद्यालय के सभी उन अध्यापकों का जिनकी रुचि और प्रयास के कारण ये संभव हो पाया। आज हमारे बीच में ऐसे विशेष बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। और हां, सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे। इन्हें कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन ये कई बातों में दूसरे बच्चों से बहुत आगे हैं। तो चलिए आज की इस विशेष बैठक को शुरू करते हैं। रेणु जी, आप
9: जी जी,
6: आप कह रही थी कि आपकी कक्षा में एक बच्ची है मीना, आप मीना के बारे में हमें कुछ बताइए।
8: जी, मैं आपको इस बच्ची मीना से मिलवाती हूँ। देखिए, मेरी मीना पढ़ाई में बहुत तेज है, इसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, और ये इस बार भी चौथी कक्षा में प्रथम आई है। और हाँ, इसकी लिखाई भी बहुत सुंदर है। मीना
9: जी,
8: तुम्हें पढ़ाई कैसी लगती है?
9: दीदी, मुझे तो पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी लगती है। मुझे स्कूल आना और पढ़ना बहुत पसंद है।
8: और तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है?
9: जी, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं और बच्चों की तरह तेज नहीं दौड़ पाती, मेरे एक पैर में तकलीफ है।
7: अच्छा, ये बताइए, ऐसा मीना के साथ कब से है? क्या इसे बचपन से ही ये तकलीफ है?
8: डॉक्टर पुष्पा, इसकी माँ ने मुझे बताया था कि जब ये पैदा हुई थी तो बिल्कुल ठीक थी, फिर 2 साल की उम्र में बहुत बीमार हो गई, इसको तेज बुखार हो गया और इसके इलाज में देर हो गई। उसके बाद इसके बाएं पैर की ताकत जाती रही।
7: अच्छा।
8: जिससे ये स्वाभाविक रूप से चलने फिरने से असमर्थ हो गई। डॉक्टर ने बाद में बताया कि मीना को पोलियो हो गया है।
6: डॉक्टर पुष्पा, पोलियो के विषय में हमें जरा विस्तार से बताएंगे?
7: देखिए, पोलियो एक ऐसा रोग है जो केवल हाथों या पैरों पर असर करता है।
6: अच्छा।
7: इसका असर जिस हाथ या पैर पर होता है उसका विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता। पोलियो से प्रभावित हाथ पैर पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें शक्ति कम हो जाती है।
8: डॉक्टर पुष्पा, क्या पोलियो का असर देखने सुनने या बोलने पर भी होता है?
7: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें देखने, बोलने, सुनने और समझने में कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, एक बात बताइए
8: जी,
7: क्या मीना के माँ बाप मीना को बाद में भी डॉक्टर के पास ले जाते थे?
8: जी हाँ, उसकी माँ ने मुझे बताया था कि वे लोग उसे ले तो जाते थे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, पर इसके पहले ही उसके बाएं पैर की हड्डियाँ बिल्कुल पतली हो गई थी, उसमें खड़े होने की ताकत नहीं रही और इसका बायां पैर इसके दाएं पैर से छोटा हो गया।
7: देखिए, समय से दवाई न लेने से या समय पर इलाज न कराने से ये समस्या आ सकती है
6: जी।
7: अब इसीलिए हमारी सरकार ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए जगह जगह पोस्टर इश्तिहार लगवाए हैं। आपने रेडियो टीवी पर सुना होगा कि आजकल तो सरकार ने पोलियो हटाओ अभियान चलाया है, जिसमें 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है।
8: जी हाँ, पर डॉक्टर पुष्पा, अब हम मीना की मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
7: जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, वो कक्षा में और बच्चों की तरह पढ़ सकती है। हाँ, शारीरिक क्रियाओं में या को करिकुलर एक्टिविटीज में उसको इस प्रकार शामिल कीजिए कि वो कार्य उसकी क्षमता के अनुसार हो।
8: जी।
6: नीलम, तुमने कहा था कि तुम्हारी क्लास में सरिता है जिसके बारे में तुम चर्चा करना चाहती हो।
10: जी डॉक्टर पुष्पा, मेरी कक्षा में इस सरिता ने अभी दाखिला लिया है। ये व्हील चेयर में आती है, ये 6ठी कक्षा में पढ़ती है और ये भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है।
7: अच्छा, एक बात बताओ
10: जी,
7: सरिता व्हील चेयर का प्रयोग कब से करती है?
10: इसकी माँ ने बताया था कि व्हील चेयर का प्रयोग इसने इसी साल से शुरू किया है। 4 साल की उम्र तक तो सरिता और बच्चों की तरह खेल कूद में बहुत अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे इसके पैरों में कमजोरी आती गई और फिर इसे इस कुर्सी का सहारा लेना पड़ा।
7: सरिता, तुम्हें और भी कोई परेशानी है?
9: हाँ मैडम जी, मुझे हाथ में कमजोरी लगती है और गर्दन घुमाने में कठिनाई होती है।
10: डॉक्टर पुष्पा, कहीं ये समस्या बढ़ तो नहीं रही है? क्या इससे इसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा?
7: हाँ, ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी अवस्था का शिकार है जिसमें मस्कुलर डिसफंक्शन यानी गत्यात्मक विकार होता है और जो हर बच्चे में अलग अलग दिखाई देता है।
10: जी,
7: ऐसे बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। इस अवस्था में धीरे धीरे सारे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं। पर इसका समझने की योग्यता और पढ़ाई लिखाई पर असर नहीं पड़ता।
10: अच्छा।
7: ऐसे बच्चे 12वीं तक और उसके आगे भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं।
10: ऐसा विकार होता क्यों है?
7: ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चों के खून में कुछ रसायन जिसको CPK कहते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है।
10: अच्छा। हम इसमें बच्चों की क्या मदद कर सकते हैं डॉक्टर पुष्पा?
7: सरिता, अब तुम अपनी कक्षा में जा सकती हो। हाँ
9: जी मैडम।
7: हाँ, तो इनकी मदद करने के लिए आप इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको जितना प्यार दे सकते हैं उतना दें।
10: जी।
7: इन बच्चों की आयु सीमित होती है, इसलिए उनसे उच्च पढ़ाई और नौकरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
10: जी।
7: केवल बच्चों को और उनके माता पिता को प्रोत्साहन देकर उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। और बच्चों की तरह इनको काम देते रहें।
10: जी ठीक है।
6: हाँ दीपिका जी, आप भी कुछ किसी बच्चे के बारे में बात करना चाहती थी?
10: जी डॉक्टर पुष्पा, ये सीमा है, ये भी सरिता की तरह पहिए वाली कुर्सी पर है। सीमा, ये डॉक्टर पुष्पा हैं।
11: नमस्ते।
6: डॉक्टर पुष्पा, ये हमारे स्कूल की अध्यापिका रेनू जी है ना, उनकी बहन की बेटी है।
7: अच्छा अच्छा। सीमा, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो तुम?
11: मैं 7वीं में पढ़ती हूँ।
7: रेनू जी, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए।
8: डॉक्टर पुष्पा, मैंने और नीलम जी ने इसकी माँ से विस्तार में बातचीत की है।
7: अच्छा।
8: ये जब खड़ी होने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। बचपन से ही हर काम को सीखने में पीछे रह जाती है। जब ये 10 महीने की थी तब भी अपनी गर्दन अन्य बच्चों की तरह ठीक से संभाल नहीं पाती थी। और अब भी ये ठीक से चल नहीं सकती, हर समय इसको इस पहिए वाली कुर्सी पर ही बैठना पड़ता है।
10: डॉक्टर पुष्पा, सीमा बहुत होनहार है, ये बहुत कोशिश करती है कि और बच्चों के साथ गेंद से खेले, लेकिन ये गेंद पकड़ ही नहीं पाती है, गेंद इसके हाथ से गिर जाती है।
8: जिस तरह से और बच्चे अपने हाथ से खाना खाते हैं उस तरह ये खा नहीं सकती, इसको खाने में समय लगता है, कभी कभी तो इसके हाथ बिल्कुल अकड़ जाते हैं।
7: अच्छा।
8: जब हाथ में अकड़न ज्यादा हो जाती है तो इसके हाथ से खाना गिर जाता है।
10: डॉक्टर पुष्पा, कभी कभी सीमा के मुंह से लार भी टपकती है और चेहरे की मांसपेशियां भी अकड़ सी जाती हैं।
8: शायद इसलिए ही दूसरे बच्चे इसको कुछ अलग तरह से देखते हैं।
10: जी।
8: कुछ लोगों का शायद ये मानना है कि ये कोई छूत की बीमारी ना हो,
7: पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
10: सीमा, तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो, तुम्हें क्लास में जो काम करने के लिए कहा जाता है वो सब समझ में आता है क्या? ये सब डॉक्टर पुष्पा को बताओ।
11: हाँ, समझ तो आता है पर लिख नहीं सकती।
8: इसे देखने और बोलने में कुछ परेशानी होती है। सवाल तो कर लेती है पर उत्तर देने में कठिनाई होती है।
7: अच्छा।
8: और ये साफ साफ बोल नहीं पाती, इसे लोग इसकी बात ठीक ठीक समझ नहीं पाते।
10: रेनू जी, इसको ये समस्या कब से है?
8: ये बहुत ही छोटी थी, करीब 4 महीने की रही होगी, तब ये पालने से गिर पड़ी थी।
7: अच्छा।
8: इसके सर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी, शायद हो सकता है ये चोट का प्रभाव हो।
10: डॉक्टर पुष्पा, इसको समस्या क्या है?
7: ऐसा लगता है कि ये दिमागी पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। इसको केवल शारीरिक विकलांगता ही है, क्योंकि ये 7वीं कक्षा में पढ़ती है तो इसके दिमाग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
10: डॉक्टर पुष्पा, हम इसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
7: देखिए, इसको हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराइए।
6: जी। आज हमने 3 प्रकार के गत्यात्मक विकलांगताओं के बारे में जानकारी हासिल की।
10: जी।
6: पहली पोलियो, दूसरी मांसपेशी विकृति और तीसरी मानसिक पक्षाघात।
7: डॉक्टर पुष्पा, आप इसके बारे में कोई उपाय बताएंगी?

0: इन बच्चों के लिए कुछ अन्य मदद की जरूरत भी पड़ती है, जैसे कि संसाधन यंत्र आदि, अच्छा आहार और धीमी गति से पढ़ाना।
1: डॉक्टर पुष्पा, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं।
0: अच्छा तो मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।
1: नमस्कार। नमस्कार।
2: तो साथियों, डॉक्टर पुष्पा ने आज के वार्तालाप में हमें बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम इनकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराना। इसके अलावा यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि गत्यात्मक विकलांगता अन्य प्रकार की भी हो सकती है, जैसे रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कठिनाई होने से, जोड़ों के दर्द, विटामिन डी की कमी, जन्म के साथ बच्चों में सख्त जोड़ों का होना, शरीर के किसी अंग का गलत जगह होना, देरी से पैदा होना, किसी दुर्घटना में अंग का कट जाना, कोई अंग न होना इत्यादि। साथियों, याद रखिए, इन बच्चों को हमेशा आपका प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए।
3: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
4: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
3: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
5: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
6: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वे पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WDFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉ जितेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों की देखभाल के लिए कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। ये नई इकाई कैंसर के मरीजों को बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ हजारिका की आवाज ने पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका के संगीत ने असमिया संस्कृति को उसकी संपूर्ण विविधता के साथ विश्व मंच पर पहुंचाया है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। कल भारत अंतिम पूल मैच में चीनी ताइपे से मुकाबला करेगा। ये मैच जीतने पर भारत सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 0.5% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 75,705 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 23,675 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియో క్లాక్ల సమయం 12:05 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో చైతన్య స్ఫూర్తి.
3: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన దానికి డిక్లరేషన్ ఫామ్ తో పాటు ఫామ్ 6, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి సెప్టెంబర్ 16 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఈఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ లేదా బిఎల్ఓ కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
2: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియో క్లాక్ లో సమయం 12:05 దాటి 42 సెకండ్లు. చైతన్య స్ఫూర్తి కార్యక్రమానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం అంటోంది మీ రేడియో నేస్తం పద్మిని. ఈరోజు సెప్టెంబర్ 8వ తారీఖు ప్రపంచ అక్షరాస్యతా దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం ప్రపంచమంతా. ప్రతి మనిషి వ్యక్తిగతంగా ఎదగాలన్నా, దేశం అభివృద్ది చెందాలన్నా ఏం కావాలి? అందరికీ కావాల్సింది చదువు. ఆ చదువే పునాది కూడా. మరి 100% సంపూర్ణ డిజిటల్ అక్షరాస్యతతో ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్న ఒక ఆదర్శ గ్రామం గురించి ఈరోజు మనం చైతన్య స్ఫూర్తిలో మాట్లాడుకుందాం. ఇంతకీ ఏంటా గ్రామం, ఎక్కడుంది, ఏంటా విశేషాలు, వినాలంటే ఏం చేయాలి? ట్యూన్ చేసి ఉంచండి ఆకాశవాణి వివిధ భారతి, తరతరాల తరగని ఆనందం అలరించే సంపూర్ణ వినోదం. శబ్ద తరంగాలపై శ్రవ్య సౌరభాలను దరిచేర్చే సారథి,
4: విజ్ఞాన వినోదాలను శ్రోతలకు అందించే వారధి,
2: ఆపాత మధురం ఆలోచనామృతాలని

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: बस बिल्कुल ठीक है ममता जी। अच्छा एक बात बताइए कि जब अखबार आप पढ़ती हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ती हैं अखबार में?
1: ये प्रश्न तो बहुत मुश्किल है। कई बार हम फ्रंट पेज पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसी कोई ऐसी खबर आई है जो बिल्कुल दुखद है या बहुत उस पर ध्यान आकृष्ट हो रहा है तो फ्रंट पेज पढ़ते हैं। नहीं तो मेरी आदत है मैं सबसे पहले संपादकीय वाला पेज पढ़ती हूँ। और एक जमाना था सबसे पहले अंतिम पृष्ठ पढ़ा करते थे जब प्रतिदिन कॉलम आया करता था शरद जोशी का, तो सबसे पहले अखबार का वो पलट देते थे और पीछे से शुरुआत करते थे, फिर संपादकीय वाला पृष्ठ, फिर हम फ्रंट पेज पर जाते थे। लेकिन आजकल कई बार खबरें ऐसी देखने को मिलती है, लगता है कि हाँ एक निगाह फ्रंट पेज पर डाल लो उसके बाद संपादकीय वाले पृष्ठ पर जाना इसलिए भी अच्छा लगता है कि उसमें एक तो कई आलेख होते हैं और वो पढ़कर हमारे पास शब्दकोश का भंडारण होता है और शब्दकोश मिलते हैं, भाषा मिलती है और एक कंटेंट भी मिल जाता है, विषय वस्तु मिल जाता है।
2: कई बार ममता जी ऐसा होता है कि सब लोग जब पेपर खोलते हैं तो वो यही करते हैं कि पहला पेज देखा उसके बाद आखिरी में चले गए और फिर बीच में आ गए, तो जो उन्हें जो जिस चीज में रुचि है तो वो चीजें वो पहले पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम गृहणियां हैं तो हम लोग पहले देखेंगे कि आज क्या क्या उसमें कुछ अलग सी दिया गया है, व्यंजन दी गए या कहानी दी गई है, तो हम लोग उन चीजों को पढ़ना पहले पसंद करते हैं।
1: अपनी अपनी पसंद के अनुरूप लोग चुन लेते हैं कि कौन सा पृष्ठ पढ़ना है। और तीसरा पेज भी पढ़ना चाहिए, तीसरे पेज पर शहर की खबरें होती हैं। और जब पढ़ाई के दिनों में विश्वविद्यालय की खबरें हुआ करती थी तब तो मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, इंटरनेट का, सोशल मीडिया नहीं था, तो कई बार अचानक यूनिवर्सिटी बंद होती थी और तो फिर जाना ना पड़े तो वो खबर सबसे पहले देखते थे कि AU क्लोज्ड, याद होगा है ना?
2: आपने बिल्कुल तो, सही कहा आपने, क्योंकि जो जिस समय दौरान दौर में हम लोग थे तो उस दौरान के समय की जो खबरें हमारे लिए जरूरी होती थी वो हम पहले ही पढ़ना पसंद करते थे।
1: तो एक मिनट इससे पहले कि आप कुछ कहें मैं अपने श्रोताओं से कुछ कहना चाहती हूँ। वो ये कि ये बताएं कि हमने तो अपनी बात बता दी, हमारे श्रोता बताएं कि अखबार पलटते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं और स्कूल कॉलेज के दिनों में क्या पढ़ा करते थे। अगर कोई कॉलम याद है तो उस कॉलम का जिक्र करें, जैसे हमने अभी दो कॉलम का जिक्र किया प्रतिदिन, और यूनिवर्सिटी कॉलेज की खबर कि जब दिख जाता था जैसे बहुत बदली, कुहासा छाया हुआ, घनी बदली है, ठंड से हड्डियां कपकपा रही हैं, ऐसे में लगता था अरे बाप रे क्लासेस के लिए जाना है यूनिवर्सिटी और घर से बहुत दूर थी, तो पन्ना पलटते थे, AU क्लोज्ड जब आता था आहा आज तो नहीं जाना है, घर पे आराम से रजाई ओढ़ के बैठना है। तो ऐसी कोई बात याद आई है अभी बातों के दौरान तो जरूर लिखें, बहुत संक्षेप में लिखें हमारे श्रोता, है ना?
2: और मुहावरों की दुनिया में घर घाट एक करना, यानी कि किसी भी

0: विषय पर अगर हमें जानकारी लेनी है तो हम उसमें पूरी तरह से जुट जाते हैं, यहाँ वहाँ कहीं से भी किताबों से अखबारों से सब जगहों से लेना पसंद करते हैं।
1: अच्छा जरा बताइए, शिक्षा क्यों जरूरी है
0: भाई? अगर शिक्षा, अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो पढ़ी क्या पाएंगे कुछ भी, हमें सब किताबें शून्य नजर आएंगी।
1: और किताबें कैसे पढ़ेंगी और करियर के लिए कैसे आगे बढ़ेंगी?
0: हाँ, पहले
1: और...
0: तो किताबें नहीं पढ़ पाएंगे तो करियर की बात ही बहुत दूर है ना। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, शिक्षा बहुत जरूरी है।
1: शिक्षा जरूरी है, क्यों जरूरी है? और साथ में आपने अपने बच्चों को शिक्षा दी है, दे रहे हैं या नहीं, या बचा लिया है? खास तौर से बेटियों को कम शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा भी मुद्दा होता है घरों में, वो भी बताया।
0: क्योंकि आज विश्व साक्षरता दिवस भी है तो इस पर भी हम बात करेंगे। और सखी विशेष में सुरुचि वाघ jombe.com की संस्थापक CEO हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले तो हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।

0: तो देखिए, शिक्षा की बात चल रही थी ना, शिक्षा क्यों जरूरी है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद हम लोग आपस में ही सिखाने लग जाते हैं बच्चों को कि बोलना शुरू करे वो जल्दी से जल्दी। तो उसको छोटी छोटी चीजें, अक्षर सिखाने लग जाते हैं, कभी ABCD, कभी का खा गा, या उसके सामने हम दो दो अक्षर के शब्द बोलने लग जाते, कहते हैं कि बोलो बेटा, पापा, मम्मी, ऐसे सिखाते ना। तो वो धीरे धीरे चल के जब बच्चा बोलने लग जाता है तो घर से सीख जाता है, और घर में ही कहते हैं कि पहली पाठशाला तो घर की ही होती है। फिर हम बच्चों को चाहते हैं कि हमारा बच्चा छोटे वाले स्कूल में जाए, प्ले ग्रुप वगैरह में, जहाँ पे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ज्ञान को वो उस समय के हिसाब से, आयु के हिसाब से उनको जो ज्ञान दिया जाए वो सीख सके।
1: और अभी एक तरीका और है, घर पे ही शिक्षा लेना, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई करना, वो भी अपनी जगह पर, अगर किसी के पास वो सुविधा नहीं है स्कूल

0: की तो वो भी ठीक है, लेकिन जो स्कूल जाकर बच्चे सीखते हैं पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे आचार व्यवहार, बात
1: जी
0: करना और खेल कूद के साथ जो बातों बातों में सीख जाते हैं, वो घर पे बैठे नहीं सिखा पाते हैं माता
1: बिल्कुल
0: पिता अकेले। जो 30 बच्चों के साथ, 60 बच्चों के साथ एक क्लास में बच्चे सीख पाते हैं, थोड़ी न थोड़ी सबसे कुछ न कुछ पाते हैं, उधार लेते
1: बिल्कुल
0: हैं, तो ये सारी बातें, स्कूल की शिक्षा बहुत जरूरी है। और दरअसल शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्रियां बटोर लेना भी नहीं होता है, परीक्षा पास कर लेना भी नहीं होता है, बल्कि जिंदगी को सही ढंग से सीखने की समझ भी शिक्षा से हमें मिलती है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए शिक्षा यानी पढ़ाई बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम शिक्षा प्राप्त करके रहेंगे तभी तो हम आगे करियर भी चुन सकते हैं कि हमें किस क्षेत्र की ओर जाना है, जहां से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। और उन सब के लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप हर चीज की जानकारी बहुत अच्छे से ले सकेंगे और बिना हिचकिचाहट आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: और जब ज्ञान जब मिलता है ना, तो उसके अंदर से, अपने अंदर से जो क्या आता है, मन से जो डर निकल जाता है कि हमें लगता है हमें ये चीज पता चल गई, इस बारे में, इस विषय में ये जानकारी हमें मिल गई है। और हम लोगों की जो सोच का दायरा भी शिक्षा से बढ़ता है, और इसके साथ साथ ममता जी निर्णय लेने की क्षमता जो होती है उसमें भी हमारी बहुत मजबूती आती है।
0: बिल्कुल, और महिलाओं के लिए तो बहुत जरूरी है। एक समय था कि महिलाएं 4 दीवारी के अंदर कैद रहती थीं और उन्हें शिक्षा से परे ही रखा जाता था
1: जी
0: कि ठीक है, इनका इन्हें क्या होगा, ज्यादा पढ़ा लिखा कर एक शादी कर दी जाएगी, दूसरे घर जाकर वहां का कामकाज संभालेंगी। लेकिन अब दौर बदल चुका है, महिलाओं को भी लड़कियों को भी उतनी ही शिक्षा जरूरी है जितना कि लड़कों के लिए। और वो जब आजीविका कमाने लायक हो जाएंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा, तो वो भी अपने निर्णय लेने में सक्षम होंगे। जैसे बहुत सारे काम है जो पुरुषों के क्षेत्र में ही रखा जाता है, जैसे बैंक का काम है, पोस्ट ऑफिस का काम है, बाहर की जो दुनिया होती है उसमें पुरुष ही कामयाब माने जाते हैं अमूमन, कि घर में लड़कियां नहीं करती हैं महिलाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आज के दौर में हर काम महिलाओं को भी करना चाहिए बराबर बराबर,
1: बिल्कुल आपने बहुत
0: तो
1: सही
0: अगर
1: कहा
0: वो
1: जी
0: शिक्षित नहीं होंगे तो ये नहीं कर पाएंगे।
1: जी और ये बहुत जरूरी भी है कि सबको समझना भी चाहिए कि घर की महिलाओं बेटियों को इन सब चीजों की जानकारी जरूर दें।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि परेशानी और मुसीबत के समय शिक्षा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और सच्ची साथी बनती है। नौकरी छूटने, व्यापार में घाटा होने, किसी भी वित्तीय संकट या हमारे साथ हुए आकस्मिक हादसे के बाद हमारी डिग्री, कौशल और शिक्षा ही हमें दोबारा खड़े होने का संबल देती है। शिक्षा ही हमारा वो अदृश्य कवच है जो हर तरह के संकट में हमें रास्ता दिखाती है और परिस्थितियों से लड़कर जीतने का हौसला भी देती है।
1: बिल्कुल, और एक साथी लिखते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन का सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें ज्ञान, नैतिकता और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। ये केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि जीने का सही ढंग सिखाती है। शिक्षा व्यक्ति को अपने फैसले लेने, खुद फैसले लेने में और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है।
0: अब सुनते हैं ये गाना।

0: विविध भारती से हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और मंजरी जी, हम शिक्षा की बात कर रहे थे कि क्यों जरूरी है शिक्षा। हमारे बहुत सारे श्रोता अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये बात तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शिक्षा जो हर व्यक्ति में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आत्मविश्वास जगाती है, मानसिक बौद्धिक विकास के साथ बेहतर जीवन शैली और स्वास्थ्य के लिए जागरूक करती है। शिक्षित होने पर अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, साथ में सभ्य समाज के निर्माण में एक जिम्मेदार नागरिक बनना भी सिखाती है। जाहिर सी बात है, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बाल बच्चों को तौर तरीका सिखा सकते हैं, शिष्टाचार सिखा सकते हैं, नैतिक शिक्षा बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। अगर आप खुद नहीं पढ़े होंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए कहते हैं कि हर किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं करी है तो जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ बैठ के कुछ कुछ पूछते रहिए, सीखते रहिए, तो उस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। हमारी एक सखी लिखते हैं कि हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। खदान से निकले पत्थरों को जब तराशा जाता है तभी वो हीरा बन जाता है। उसी तरह शिक्षा का संस्कार होता है। शिक्षा ज्ञान कौशल आदतें और उचित आचरण को सीखने और सिखाने के निरंतर प्रक्रिया है। औपचारिक शिक्षा व्यक्तित्व को सर्वांगीण बनवाकर उसे समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पेश करती है। तो अनौपचारिक शिक्षा अपने परिवार, समाज और अनुभवों से हम हरदम सीखते रहते हैं। और लिखते हैं कि जी हाँ, हर प्रकार की शिक्षा में कुछ बुनियादी नैतिक तत्व या अच्छी बातें अनिवार्य रूप से समाविष्ट करती हैं। और इसी तरह से हमारे एक साथी और लिखते हैं कि शिक्षा क्यों जरूरी है। आज शिक्षा के बिना आज के जमाने में व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन के सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं, व्यक्ति सफलता की और अग्रसर नहीं हो पाता है, अपने आप को लाचार समझने लगता है, संसार और जीवन को ठीक से समझ भी नहीं पाता। इस कारण शिक्षा जरूरी है।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि शिक्षा मानव जीवन के विकास, ज्ञान प्राप्ति और अज्ञानता को दूर करने की सबसे बुनियादी और अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षा हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का नया सवेरा लाती है। ये मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ सही आचरण और अनुशासन भी सिखाती है। देखिए ना, ये गाना भी कुछ यही बात कह रहा है। तो सुनते हैं आलाप फिल्म का ये गाना जी।

0: आज सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं सुरुचि वाघ जॉम्बे.com की संस्थापक और सीईओ। ये एक सफल महिला उद्यमी है जिन्होंने 2010-2011 में मोहित गुंडेचा के साथ मिलकर जॉम्बे की सह स्थापना की। आखिर जॉम्बे क्या है ये हमें जानना चाहिए, ऐसा मन में विचार आता है, तो ये हम आपको बता दें कि ये पुणे स्थित एक प्रसिद्ध टैलेंट असेसमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट और एनालिटिक्स कंपनी है। इसका कार्य होता है कि कंपनियों को उनके कर्मचारियों के व्यवहार क्षमता और नेतृत्व कौशल का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक और डेटा संचालित समाधान जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट प्रदान करती है।
1: और सुरुचि के बारे में भी जानकारी दे दें कि वे औरंगाबाद महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस और यहां से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनी में ये प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में भी इन्होंने काम किया।
0: जी, भारत वापस आकर उनके अंदर का उद्यमी उन्हें बार बार ये एहसास दिला रहा था कि उनका असली रास्ता भारत की मिट्टी में छिपा है। साल 2010 में जब भारत में स्टार्टअप कल्चर अपनी शुरुआती सांसें ले रहा था, वे नौकरी छोड़ भारत आई, वे समझ चुकी थी कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती सही टैलेंट को पहचानना और उसे निखारना है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने सह संस्थापक मोहित गंडोत्रा के साथ मिलकर जॉम्बे की नींव रखी। शुरुआत आसान नहीं थी, एचआर का क्षेत्र भारत में पारंपरिक तरीकों से जकड़ा हुआ था। सुरुचि ने डेटा और साइक्रोमेटिक्स के आधार पर लोगों के व्यवहार को मापने की बात वो करती थी, तो कई पुरानी सोच वाले अधिकारी उन पर शक करते थे और एक युवा महिला एंटरप्रेन्योर के रूप में कॉर्पोरेट बोर्डरूम में अपनी बात मनवाना और भरोसा जीतना एक बहुत दोहरी चुनौती थी। लेकिन सुरुचि वाघ ने हार नहीं मानी। उन्होंने जॉम्बे को केवल एक डेटा कंपनी नहीं बनाया बल्कि उसे एक टैलेंट असेसमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में ढाल दिया।
1: और उन्होंने तकनीकी और मनोविज्ञान को इस तरह से मिलाया, तकनीक और मनोविज्ञान को इस तरह

0: मिला है कि कंपनियां ये समझ सकें कि कोई उम्मीदवार न केवल चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। उनकी कंपनी ने व्यक्ति की योग्यता, व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, व्यवहार और कार्य करने की शैली का वैज्ञानिक रूप से आकलन किया। इससे कंपनियों को सही प्रतिभा की पहचान करने और कर्मचारियों के विकास के लिए बेहतर निर्माण के लिए वो कदम उठाती थी।
1: जी, दिन रात की मेहनत उनकी रंग लाई और भारत की कई दिग्गज कंपनियों ने जॉम्बे के आकलनों पर भरोसा करना शुरू किया। इसमें लाखों लोगों के करियर को सही दिशा मिली। एचआर टेक की दुनिया में एक बड़ा नाम ये बन गया।
0: सुरुजी बाग की ये यात्रा महज एक सफल बिजनेस की कहानी नहीं है, ये उस हिम्मत की दास्ता भी है जो सिलिकॉन वैली के आराम को छोड़कर अपने देश में शून्य से शुरुआत की और भारतीय कॉरपोरेट जगत में अपनी एक खास पहचान बनाने का हौसला भी रखती है। और उन्होंने खास पहचान बनाई।
1: जी, और हम लोग सुनते हैं
0: एक गाना।

0: मंजरी जी, ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं सखी सहेली की इस महफिल में और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां देख रही हूँ तो लगातार ऐसा लग रहा है कि हमारे श्रोता भी बहुत पढ़ते हैं,
1: वो हल्की फुल्की बातों में उन्होंने लिखा है ना,
0: पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं और हमारी एक सखी है जो नियमित रूप से पढ़ती भी रहती है, लिखती भी रहती है कुछ कुछ, उनकी एक टिप्पणी है मेरे सामने दिख रही है तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इन्होंने लिखा है कि बचपन में नंदन, चंपक और चंदा मामा पढ़ते पढ़ते कब अखबार पढ़ना जीवन में शामिल हो गया पता ही नहीं चला। हर माता पिता को अपने बच्चों को बचपन से ही स्कूली किताबों के अलावा बाल साहित्य से परिचय जरूर करवाना चाहिए। किताबें शब्द दर शब्द दिखाती हैं आईना और अंधेरे में थाम लेती है हाथ। कहने भर को नहीं, किताबें सच में हमारी सच्ची दोस्त हैं और अखबार हमें देश दुनिया की खबर से अपडेट रखता है, मगर अब आज का जो जमाना है वहां बच्चे कंप्यूटर की स्क्रीन पर अक्षरों की सरगोशियों के साथ डूबते उतराते रहते हैं। शायद वे नहीं जानते कि कागज नहीं रखेंगे शब्दों को बांधकर, कागज ही रखेंगे शब्दों को बांधकर। मंजरी जी, आपको याद होगा जब हम कहीं यात्रा किया करते थे, इनकी इन पत्रिकाओं के नाम से याद आ गया कि जब यात्रा के लिए ट्रेन का इंतजार होता था तो खास तौर से पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता था, ये सारी मैगजीन चंदन, चंपक, नंदन और चंदा मामा वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी पत्रिकाएं, और स्टेशन पर बुक स्टॉल हुआ करते थे तो देखते थे कि अभी कितना टाइम है, दौड़कर जाते थे और किताबों के वाले स्टॉल पर खड़े होकर वहां पर ये सारी पत्रिकाएं जो नई आई हुई होती थी वो ले लेते थे। अखबार अपने घर में जो आता था उसके अलावा जो दो तीन अखबार और होते थे लेके बंडल बना के रख लिया। अब ट्रेन के इंतजार के लिए कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम से सीट पर बैठकर वो पढ़ाई होती थी।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। और हमारे भी घर में भी ऐसे ही होता था कि हम लोग जाते थे तो तुरंत ले लेते बहुत सारी किताबें, और पहले तो फोटो देखा जाता था किताबों की, उसके बाद फिर जो कहानी चित्र अच्छा लगता था उस हिसाब से उस नंदन या चंपक की कहानी पढ़ी जाती थी। और कई बार तो भूल गए लेना, गाड़ी चल दी और नहीं ले पाए किताब, तो बोगी में अगर कोई बच्चा किताब पढ़ रहा है तो बस उसके बगल में बैठना है।
0: उन दिनों बोगी में भी बेचने भी आ जाते
1: आते भी थे
0: और कई बार वो इन पत्रिकाओं की कहानियों का पहले अंत पढ़ते थे।
1: हाँ,
0: देखिए अंत में शुरू का पढ़ा और सोचते थे जल्दी से अंत क्या हुआ, अंत क्या हुआ, ये जिज्ञासा होती थी तो दौड़कर अंत पढ़ लेते थे।
1: मेरी तो आदत थी ममता जी, मैं तो बगल वाला जो बच्चा पढ़ता था ना बस उसी में आंखें ऐसे उसके पेज पे डाल के फटाफट पढ़ते रहते थे, कहीं ये पन्ना ना पलट दे। तो इस तरह की बहुत सारी यादें शामिल हो जाती हैं। और देखिए हमारे साथी भी लिखते हैं कि हम तो उस जनरेशन के हैं जब अखबार का टुकड़ा में अखबार के टुकड़े में उड़िया में बनाकर कोई सामान किराना काटा था, मतलब पुड़िया जो बनाते थे उससे अखबार के कोने से, तो उसको खोलकर पढ़ लेते थे और अगर फिल्म संबंधी हो तो पूछे मत, उसे अच्छे से सहेज कर पढ़ा जाता था। हमारे उस सुनहरे दौर में किताब पढ़ना प्रिय मनोरंजन का साधन होता था और ज्ञान वृद्धि भी होता था। रोजाना अखबार और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत आपके ज्ञान शब्दावली और मानसिक एकाग्रता को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी तरीका होता था और देश दुनिया की खबरें होती थी वो तो ये पढ़ती ही पढ़ती थी।
0: और ये जो पढ़ने की बात है इससे इनकी बात से एक बात और याद आई कि समोसे का जो रैपर होता था उसमें कुछ कई बार लघु कथा लिखी होती थी या कोई अलग से चुटकुला या कोई
1: कार्टून का भी रहता
0: था, तो वो भी हम लोग पढ़ डालते थे। और चुरमुरे में भी जो अखबार का या किसी पत्रिका का कुछ लिखा हुआ होता था तो चुरमुरे में क्या होता था, गीला हो जाता था, तो खाने के बाद वो गीले वाले हिस्से को हम उठा उठाकर ऊपर अगल बगल थोड़ा उसको टेढ़ा करके तिरछा करके देखते थे कि इसमें क्या लिखा था और कुछ कुछ अटकले लगा लेते थे कि ये होगा इसमें।
1: देखिए शिक्षा का यही फायदा हुआ ना कि कहीं भी कुछ लिखा दिखा।

0: लग गए
1: साथ में पढ़ने का शौक जी, जी। क्योंकि उस समय पढ़ना ही पढ़ना था और कुछ माध्यम नहीं होता था, या फिर आप खेलिए, ये सब मोबाइल और टेलीविजन या फिर कंप्यूटर लैपटॉप ये सब नहीं था, तो ये बहुत बड़ी सुविधा थी और एक तरह से ये किताबों से जोड़ने का माध्यम भी था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आपने जो अखबार में पूछा है कलम पढ़ने का, तो बचपन से मेरे पापा हम लोगों को सबसे पहले पेपर की हेडलाइन पढ़ना अनिवार्य होता था सुबह से, और उसके बाद एक जो कल माता था आज भी आता है,
0: कॉलम आया करता था,
1: यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, जो कॉलम आता था आज भी आता है, जीवन दर्शन और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ कुछ कॉलम होते हैं वो पढ़ना, और कॉलम पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी होता था। पापा शुरू से ही पेपर में फोल्ड करके रख देते थे कि वो सभी को पढ़ना जरूरी है, हम लोगों को पढ़ते पढ़ते ऐसी आदत हो गई। सचमुच जैसे बच्चों को हमें पढ़वाना होता है तो आज भी हम करते हैं, अखबार का वो हिस्सा या तो कैंची से काट कर या फिर वो फोल्ड करके दे देते हैं कि हाँ ये पढ़ना जरूरी है।
0: और ममता जी के अखबार में एक पहले चित्र निकला करता था, रंगीन चित्र रहता था या रंग भरो चित्र वाला रहता था, तो उस
1: वर्ग पहली होती
0: हाँ,
1: थी
0: हाँ वो भी, और रंग भरो वाला रहता था, तो उसको काट करके हम लोग, याद है कि बचपन में कॉपी में लगाते थे, फिर हमारे माता पिता कहते थे कि इसको सोचो और इससे सोच के कोई भी कहानी लिखो, तो वो हम लोग अपने शब्दों में छोटी मोटी कहानी 10-12 लाइन की लिख देते थे, फिर पढ़ते थे, वो लोग तो बताते थे कि यहाँ पे ये सही है यहाँ पे गलत है, तो वो लिखने का जो कला है वो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मतलब इसी तरह से देनी चाहिए,
1: इसी तरह से कल्पनाशीलता का विस्तार होता है, नहीं तो सब कुछ सामने आपके रखा होता है तो आपके सोचने समझने की शक्ति कम होती है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि किताब अखबार पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है और अखबार से हमें आसपास और देश विदेश की ताजा गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है और किताब पढ़ने से मनोरंजन भी होता है और बहुत ही विषय मिल जाते हैं उसमें पढ़ने के लिए और कहानियां भी बहुत अच्छी लगती हैं। और ये लिखते हैं कि मैं बचपन से अखबार और किताबें पढ़ने का शौकीन रहा हूं, विभिन्न विषयों और लेखकों की किताबें मेरे लिए संग्रह में है, मेरे पास संग्रह में है, और यही शौक मेरे लड़के और अब पोती को भी है। पोती को गुड्डे गुड़ियों के खेल से ज्यादा किताबें पढ़ने का चस्का है। बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को किसी भी समय, आप अच्छा बच्चे रिजल्ट अच्छा लेके आते तब भी किताबें गिफ्ट करिए, और गर्मियों की छुट्टी में किताबें उन्हें उपहार स्वरूप दीजिए, बर्थडे और उस पर तो आप दीजिए, तो बच्चों के पास उनकी उम्र के हिसाब से किताबें दीजिए।
1: किताबों और अखबार से जानकारी आपकी बढ़ती है
0: जी।
1: और फिलहाल सुनिए ये गाना ताकि पहचान कर सके, आसमान के तारों की पहचान कर सके या फिर देश दुनिया के बारे में जान सके, बहुत कुछ किताबें देती हैं, तो किताबों से बच्चों को जोड़कर रखिए।

0: ममता जी हमारी एक साथी लिखती हैं कि पढ़ना तो मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, अगर कभी कभी ज्यादा बिजी होती हूं तो रात सोने से पहले पूरे 2 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, तभी वो सो पाती हैं। और न्यूज़पेपर भी सुबह जल्दी जल्दी पढ़ती हैं कि रात में उसको बाद में वो बारीकी से उसे पढ़ती हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि रोजाना अखबार और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत व्यक्ति के मानसिक विकास, ज्ञान में वृद्धि और भाषा सुधार के लिए बहुत आवश्यक है। अखबार और किताबें पढ़ने के लाभ हैं ज्ञान में वृद्धि, देश दुनिया की समसामयिक घटनाओं और नई जानकारियों से अपडेट, शब्दावली और भाषा में सुधार होता है, नए शब्द सीखने को मिलते हैं, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और छोटे छोटे लक्ष्य पैदा होते हैं। शुरुआत में दिन के केवल 10 से 15 मिनट पढ़ने के लिए निकालें और रुचि के अनुरूप विषय चुनें। यहाँ पर ये कहना सचमुच बहुत जरूरी, इनकी टिप्पणी बहुत लंबी है तो संक्षेप में हमने पढ़ दी। यहाँ पर ये कहना बहुत जरूरी है कि अगर पढ़ने में रुचि पैदा करनी है बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में, तो जरूरी है कि रोचक कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए, तब उनमें रुचि पैदा होगी।
0: बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं ना कि ममता जी की जिस एज का बच्चा है उस एज की किताबें ही उनको दिलाई जाएं, तो उससे उस समय की उन्हें ज्ञान मिले। और हमारे साथ ही लिखते हैं कि अखबार किताब पढ़ने की आदत हमारे घर पर सालों से हिंदी और इंग्लिश अखबार आता है तो हम सुबह भी पढ़ते हैं और ऑफिस से आने के बाद भी पढ़ता हूँ। धर्म पत्नी को धार्मिक किताब पढ़ने की ज्यादा आदत है। मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों को पढ़ाई की किताबों में ही अधिक समय जाता है और वैसे भी बच्चों का रुझान अखबार में कम और सोशल मीडिया के समाचारों में ज्यादा है। आज भी मैं अखबारों और किताबों को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। और ममता जी, अखबार से जुड़ी मतलब ऐसी घरों में आदत होती है कि घर में अखबार आएगा तो सबसे पहले घर का कोई जो मुखिया होगा वो ही पेपर पढ़ता है, खोलता है, उसकी तह खोलता है। तो वो चीज मुझे मतलब लगती, जब अगर मैं कभी होती तो मुझे लगता है कि उस घर में मुझे लगता है पेपर आया तो हम ही पढ़ ले सबसे पहले। तो
1: और पहले ये संयुक्त परिवार हुआ करता था, बड़ा परिवार, तो होड़ भी लगती थी कि कौन पढ़ेगा पहले। अखबार वाला आया तो जल्दी से लेकर कि हम पहले एक नजर डाल लेते हैं। और पत्रिकाओं के लिए तो बहुत ज्यादा होड़ होती थी कि हाथ जिसके हाथ लगी है वो पत्रिका पहले पढ़ेगा। और उसमें पता नहीं एक अलग सा सुख होता था कि हम पहले पढ़ ले, वो जो खुशबू होती थी पन्नों की खुशबू, वो आकृष्ट किया करती थी।
0: मैं कहने वाली थी, और कई बार मैंने तो ऐसे ही किया कि अखबार बिल्कुल खोल के पढ़ लिया, फिर वापस वैसे ही फोल्ड करके रख दिया तो सामने वाले को पता ही नहीं चला कि अखबार पढ़ा जा
1: और चुका। पुराने अखबार का प्रयोग भी बड़ा अच्छा किया जाता था, पुराने अखबार निकाल कर किताबों पर कवर चढ़ाना। जो स्कूल की किताबें होती थी, स्कूल कॉलेज की, वो तो अलग पेपर चढ़ाया जाता था कवर के रूप में, लेकिन जो पत्रिकाएं होती थी उन पत्रिकाओं को भी हम सहेजने संभालने के लिए उसको कवर चढ़ा दिया करते थे। तो ये जो संभालने की प्रवृत्ति है अब कहीं गुम हो रही है बच्चों में, ये हम सबको खाने की जरूरत है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह आते ही पढ़ने से लेकर सोने तक अखबार सिरहाने ही रहता और देश दुनिया की हर न्यूज से अपडेट रहना शौक था। मेरे स्टाफ के लोग भी मुझे चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा करते थे। हालांकि अब पढ़ना थोड़ा फेसबुक का शौक लगने और कम दिखाई देने के कारण कम हो गया है। फेसबुक का शौक अगर आपको कम दिखाई दे रहा है तो वो शौक हटा देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि वैसे तो अखबार का संपादकीय पृष्ठ ही मेरा पसंदीदा है, पर मैं शुरुआत पहले पृष्ठ से ही करना पसंद करता हूं और बाकायदा 1-2-3 पृष्ठ पढ़ती जाती हूं, लिखती है, क्योंकि मुझे पता है कि संपादकीय पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा तो शायद बाकी छूट न जाए, और संपादकीय के बगल वाले पृष्ठ पर कोई विशेष पृष्ठ भी हो सकता है जैसे स्वास्थ्य, फिल्म, कुकिंग या साहित्य से संबंधित, तो हम वहीं रह जाएंगे। कॉलेज के दिनों में क्रिकेट से ये स्पोर्ट्स वाले पृष्ठ भी वो देखा करते थे।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि किशोर अवस्था में मैं बस स्टैंड पर बस की राह देखने के लिए एक जगह ही खड़ा रहता था और वो जगह है बुक स्टॉल। स्टॉल में बुक टंगी होती थी, वो देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती थी क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि

0: मेरे पर्स में आज भी न्यूज़पेपर के वो पृष्ठ और पेन रखा ही रहता है जिसमें सुडोकू आता है और वर्ग पहली आती है
1: जी।
0: कभी डॉक्टर का वेट करना हो, कहीं भी समय मिलता है तो मैं उसको ही भरने लग जाती हूँ।
1: वैसे भी अखबार पढ़ने में महिलाओं को थोड़ा बाद ही में टाइम मिलता है महिला जी, ममता जी, क्योंकि हमारे साथी लोग पहले अखबार पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि वो महिलाएं तो सुबह सुबह किचन और चाय इन सब में ही लगी रहती है, तो जब उन्हें टाइम मिलता है तो वो पढ़े और अपनी आदत जरूर बनाए अखबार।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ जी ये सभी बातें याद ताजा कर रही हैं। इतनी सुंदर तरह से लिफाफे को खोलते थे कि कुछ फट न जाए, जितना अधिक पढ़ सके पढ़ लें। और एक श्रोता ने लिखा है कि अखबार किताब पढ़ने की आदत, हमारे घर पर सालों से हिंदी अखबार और इंग्लिश अखबार आते हैं जो हम सुबह भी पढ़ते हैं और ऑफिस से आने के बाद भी पढ़ता हूँ। और एक हमारी सखी है जिन्होंने लिखा है कि स्कूल पढ़ने के समय इंदौर में थे तब हमारे यहाँ नई दुनिया पेपर आता था और 12 या 15 सिनेमा हॉल थे उस समय इंदौर में। पेपर में क्रम से सिनेमा हॉल और उनमें लगी फिल्में और शो का समय दिया हुआ रहता था। सबसे पहले देखते थे राशिफल, फिर न्यूज, अब भास्कर में अखबार में सबसे पहले फ्रंट पेज की मुख्य समाचार पढ़ती हूँ और पूरे अखबार के संक्षिप्त लेख पढ़ती हूँ, फिर आराम से मैनेजमेंट, फंडा वगैरह वगैरह।
1: बिल्कुल सही बात,
0: राशिफल भी हम देखा करते थे,
1: बिल्कुल वो तो
0: रोजाना वाला राशिफल,
1: रोजाना वाला
0: आज क्या होने वाला है
1: जी जी।
0: और एक समय रंगों के बारे में आने लगा था तो वो भी देखते थे कि कौन सा वाला रंग शुभ होगा
1: और साथ में जब जो मतलब विवाह योग्य व्यक्ति बच्चे होते थे तो वो लोग भी उसमें तलाशते रहते थे, जो कॉलम आता था कि हाँ भाई वर वधु का है, तो वो भी बड़ा उसमें खोजबीन चलती रहती थी। नहीं भी खोजबीन है तो भी हम पढ़ के देखा करते थे कि इसमें क्या चल क्या रहा है, आजकल क्या डिमांड है, तो बड़ा अच्छा लगता था।
0: तो अब पढ़ने की बातें तो अंतहीन है, बस यही यहाँ पर इस मंच से यही करते हैं कि जहाँ जितना हो सके खूब पढ़िए, किताबें पढ़िए, अखबार जरूर पढ़िए। फिलहाल ये

0: ही राजा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। और आज कुछ मुहावरों की बात हमें करनी थी, याद है?
1: बिल्कुल, घर का घाट एक करना, यानी कि हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि बात पहले मुहावरे की करें तो इसका मतलब कठिन परिश्रम करना, यानी कड़ी मेहनत करना होता है किसी भी कार्य को सिद्ध करने या कोई चीज पाने के लिए या परीक्षा में पास होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इस बात पर गुजराती में मुहावरा भी है, कठोर परिश्रम नो कोई विकल्प नथी, मतलब कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। और यही कि जैसे कि अब हम एग्जाम देना, तो उसके पहले हम कितनी तैयारी करते हैं, तो चाहते हैं कि हर प्रश्न हम याद कर लें, जो अगर आए तो हम उसका हल लिख सके, उत्तर लिख सके। तो घर का घाट एक करना, यानी कि एकदम कठिन परिश्रम कर ही डालना जिसे कहते हैं। और हमारे साथी और लिखते हैं कि मेहनत और परिश्रम करना, लक्ष्य पाने को पाने के लिए दिन रात एक कर देना, ये मुहावरा हमारी जिंदगी में बहुत बार काम आता है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, इसका वाक्य प्रयोग भी बहुत सारे चीजों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि परीक्षा पास होने के लिए घर एक एक कर देना, घर का घाट कर देना।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक जवान देश सेवा में लगा हुआ था, जहां उसे समय बेसमय संवेदनशील निर्जन और दुर्गम इलाकों में सेवाएं देने के लिए जाना होता था। परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई, तीनों ही शासकीय सेवा में थे। कुछ अरसे बाद अस्वस्थता के कारण पिताजी नहीं रहे। जवान श्राद्ध कर्म कार्य हेतु घर आने के पश्चात अपनी ड्यूटी पर इस उम्मीद से नहीं गया कि उसे पिताजी की अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। जवान ने नियुक्ति पाने के लिए घर घाट एक कर दिए, लेकिन उसे परिवार में सभी लोग सेवारत होने का हवाला देकर नियुक्ति से वंचित कर दिया।
1: बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए चारों तरफ भाग दौड़ करना, हर जगह प्रयास करना या बहुत अधिक शारीरिक मानसिक परिश्रम करना, इसमें हर ठिकाने पर इन्होंने लिखा है कि बेटी की शादी की तैयारी में माता पिता ने घर घाट एक कर दिया, अंतर क्या है, कोई कसर बाकी ना छोड़ी। यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत जुटना ही पड़ता है। और एक लिखते हैं, घर घाट एक करना, कठिन परिश्रम करना, जैसे अच्छी नौकरी पाने के लिए बेटे ने दिन रात घर घाट एक कर दिया,
0: मतलब जी तोड़ कोशिश करना। और हमारे सभी श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और कुछ लोगों की आज भी आदत है मुहावरे में बात करना, लोकोक्तियों का प्रयोग करना, अच्छी बात है। सभी आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए कि मुहावरों में कैसी बात की जाती है। और एक आपकी भाषा में सजावट आ जाती है, आप उसका जैसे भाषा का श्रृंगार करते हैं, जब खासतौर से कुछ आप ललित लिखने बैठते हैं, ललित निबंध या कोई आलेख है, कोई कहानी है, तो उसमें अगर मुहावरों का प्रयोग बीच बीच में करते हैं तो भाषा का श्रृंगार होता है।
1: बिल्कुल,
0: बहरहाल ये बात बहुत सारे श्रोताओं की और भी टिप्पणियां आई है, लेकिन अमूमन उसका निचोड़ यही है। तो अब एक गाना सुनते हैं, ये है प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: आशा भोसले की आवाज में ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे। फिल्म थी समाधि और आज आशा भोसले का जन्मदिन है। इस गाने के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी हमने अर्पित की। अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विनीत रैना से। इनसे बातचीत की है नेहा शर्मा ने।
1: श्रोताओं नमस्कार। एक अभिनेता पर्दे पर कई किरदार निभाते हैं और हम उन्हें उन्हीं किरदारों के बीच कहीं पहचानने लगते हैं, लेकिन वास्तव में इन किरदारों के बीच छुपे हुए वो अभिनेता अपने निजी जीवन में वाकई उन किरदारों से मिलते हैं या नहीं, ये तो हमें तब पता चलता है जब वो इन सारे किरदारों से बाहर निकलकर खुद हमारे सामने होते हैं और अपने बारे में हमें कुछ बताते हैं, जैसा कि आज होने वाला है। क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे सामने हैं टेलीविजन और फिल्म्स में दो दशकों से अलग अलग किरदारों के साथ नजर आने वाले वो अभिनेता जिन्हें हमने पुनर्विवाह, मायका, लापतागंज, बेगुसराय, इश्क में मरजावा, छोटी सरदानी, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसी कई टेलीविजन सीरीज में अलग अलग किरदारों में देखा है और द शोले गर्ल, जन्नी जैसी फिल्मों में भी आप अपने अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। हाँ, शिरडी वाले साईं बाबा सीरियल में हमने उन्हें साईं बाबा के रूप में भी देखा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, चेहरे पर एक बेहतरीन मुस्कान लिए हमारे सामने मौजूद हैं विनीत रैना। तो विनीत जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम विविध भारती के सभी श्रोताओं को, और जो विविध भारती मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, और मेरी मतलब इतनी सारी मेरी जो लाइफ है जो विविध भारती सुनते सुनते ही गुजरी
1: जी।
2: आज ऐसा लग रहा है कि मैं खुद रेडियो के अंदर आके बैठा हूं और दूसरी तरफ बैठ के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक श्रोता से, आज श्रोताओं से बात कर पा रहा हूं। इट्स एन ऑनर।
1: तो ये आपकी एक कह सकते हैं उपलब्धि है कि आपने इतना कुछ हासिल किया जिसकी वजह से आज आप हमारे सामने बैठे हैं, और हमें भी बहुत गर्व हो रहा है कि आपको हम यहाँ हमारे मेहमान के रूप में पा रहे हैं। तो जब बचपन की बात हुई, और रेडियो की बात आप कर रहे हैं, बचपन से ही शुरुआत करते हैं, बचपन कैसा था आपका? बचपन से ही सोचा था कि मुझे, या किशोर अवस्था में आपने ये सोचा कि मुझे एक्टिंग करनी है या संयोग है? बचपन कैसा था ये पहले हम सुनते हैं।
2: देखिए, कला मेरे ख्याल से हर इंसान जो पैदा होता है उसके अंदर कला होती है। हम लोग छोटी उम्र से ही, किस बच्चे ने डॉक्टर डॉक्टर नहीं खेला होगा, यू नो, टीचर टीचर नहीं खेला होगा, चोर पुलिस नहीं खेला होगा। और हर बच्चा, जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, तो हम देखते हैं कि वो बच्चा डॉक्टर बना हुआ है और वो लोग उसी तरीके से अभिनय करते हैं, बट जबकि उन्होंने शायद डॉक्टर को शायद अपनी मम्मी का इलाज करते हुए देखा होगा, एंड दे स्टार्ट इमिटेटिंग, वो उसकी नकल उतारना शुरू करते हैं और एक्टिंग करना शुरू करते हैं। सो एक्टिंग का बीज जो है वो वहीं से पैदा होता है इंसान के अंदर। मुझे लगता है कि मैंने उसको थोड़ा सा शायद सीरियसली ले लिया, और मुझे ऐसे कहा जाता है कि मैं बहुत नकल उतारता था सबकी, जो भी मेरे घर पे जितने भी रिश्तेदार आते थे या कुछ आते थे, तो मैं उनको बहुत हूबहू उनकी नकल उतार लिया करता था। तो मुझे लगता है शायद मेरे जानने से पहले ही मेरे अंदर वो कला शायद पनप रही थी, आई गेस।
1: ये तो एक स्वाभाविक रूप से आपके अंदर कला पनप रही थी, लेकिन जब ये तय किया होगा कि अभिनय में जाना है या अभिनय करना है, तो कुछ खास तैयारियां की, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो थिएटर की कुछ वर्कशॉप्स करते हैं, या इस तरह की कोई तैयारी आपने की?
2: जी नहीं, मैंने हमेशा अपने आप से ही, मैंने जो भी सीखा अपने आप से सीखा, और मैं, जैसा कि आपको बताया कि मैं लोगों की नकल उतारा करता था अपने रिश्तेदारों की, और तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे लिए इतनी गौरव की बात है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ विविध भारती के स्टेशन में, क्योंकि मैं इसी रेडियो स्टेशन पे जॉनी लीवर को सुनता था मिमिक्री करते हुए, और जब मैं फिल्में देखता था तो मैं जो सुना होता था जॉनी भाई को उनकी नकल उतार के, जो एक्टर्स थे हमारे उनकी नकल उतारना शुरू कर दिया करता था। और जब हमारे घर पे रिश्तेदार आते थे तो मुझे बोला जाता था कि आप इसकी इसकी इसकी आवाज निकाल के दिखाओ, या संजीव कुमार की आवाज निकाल के दिखाओ, या मिथुन चक्रवर्ती की आवाज निकाल के दिखाओ, अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल के दिखाओ, एक्टिंग करके दिखाओ। तो मैं सबकी नकल हूबहू उतार के उनको दिखाया करता था। तो मेरे ख्याल से इन सब कलाकारों से इंस्पिरेशन लेते हुए वो कभी मेरे अंदर से शायद निकल नहीं पाया। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं ये अपने आप से ही सब सीखता गया, और जो हमारा दूरदर्शन कशीर है, डीडी कशीर बोलते हैं उसको, दूरदर्शन कशीर, उस पे मैंने बहुत सारे शोज किए, टेलीविजन सीरीज, जो कभी 7 एपिसोड कभी 12 एपिसोड्स, और मैं उस पे काम करता गया। तो वही मेरा प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस था एक्टिंग सीखने का।
1: जी, तो एक बेस बन गया आपका वहाँ काम करते करते। जी, तो जब यहाँ एक्टिंग की लाइन में आप आ ही गए, मुंबई आ गए, तो मुंबई का जीवन इतना आसान नहीं होता अगर आप बाहर से आते हैं, कहते हैं, तो कुछ स्ट्रगल कुछ करनी पड़ी, किस तरह से आप, क्या बदलाव आ गया जीवन में, ऐसा कुछ लगा आपको?
2: बहुत बदलाव आता है एक इंसान के जीवन में, और मेरा जीवन जो है वो मतलब

0: एक फिल्म से कम नहीं है मैं समझूंगा, क्योंकि बचपन आपका श्रीनगर में, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हम लोग श्रीनगर में पैदा हुए, वहाँ स्कूलिंग हुई, फिर उसके बाद हम जो वहाँ से निकले, फिर हम दूसरे हम जम्मू में आकर स्थापित हो गए, हम बिल्कुल बेघर हो गए थे नो? उसके बाद हम लोगों ने वापस से सब कुछ बटोरना शुरू किया और धीरे धीरे पढ़ाई मैंने अपनी वापस से रिज्यूम की और मैंने बीकॉम किया, साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, और मैं नौकरी करने के उद्देश्य से मुंबई आया कि मुंबई इसलिए आऊंगा कि नौकरी भी करूंगा ट्राई, लेकिन अभिनय में अपना जरूर मैं ट्राई करना चाहूंगा। और मेरा ये था कि डिसीजन था कि जो पहले मुझे चुनेगा वो मेरा जो आगे का पूरा रास्ता होगा। और कहते हैं ना कि इंसान कला को कभी नहीं चुनता है, हमेशा कला जो होती है ना वो इंसान को चुनती है। सो मेरा ऑडिशंस में देता रहा, पहला ऑडिशन मेरा जब हुआ तो उसके बाद मैंने फिर कभी किसी और चीज की तरफ देखा ही नहीं।
1: और आपका पहला सीरियल भी कुछ इसी तरह से संबंधित था, कश्मीरी जो आप कह रहे हैं आपका बैकग्राउंड है उससे संबंधित की अगर हम बात करें?
0: मुल्क था और वो पार्टीशन पे ही था पूरा, और जब हम वो सीन्स करते थे तो वो पूरा वो याद आना, वो सब कुछ आना, कि कैसे हम लोग निकले थे और कितनी मुश्किलों से हम लोग पुनर्स्थापित हुए जम्मू में, तो वो यादें बहुत ऐसा लगा कि जिंदगी कहीं ना कहीं आपको गोल गोल करके वो दिखाना शुरू कर ही देती है जो आपने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया होता है। और उसके बाद बस मैं टेलीविजन पे टेलीविजन शोज करता गया, मुझे अच्छे शोज मिलते गए, और ये मतलब भगवान का ही हाथ है मेरे ऊपर, क्योंकि कभी कोई मेरा गॉडफादर नहीं रहा, मेरा गॉड ही रहा, कोई फादर उसमें नहीं रहा, बस गॉड ही रह गया। सो मुझे कला ने, माता सरस्वती ने ही मुझे आगे आगे आज तक किया है, कभी कहीं से कुछ सीखा नहीं, जो सिखाया जिंदगी ने सिखाया मुझे।
1: तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही थी, क्यों ना एक अच्छा सा गीत सुन ले जो आपकी पसंद का हो, तो कौन सा गाना यहाँ चला ले?
0: एक गाना जिससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि वही जो है मुझे लगता है फाउंडेशन है हमारे इंडस्ट्री के, शोमैन राज कपूर साहब की फिल्म का गाना मेरा नाम जोकर से।
1: जीना या मरना या?
0: जी हाँ।
1: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: तो विनीत जी, जैसा कि आपने कहा कि जीना यहां मरना यहां, ये आपकी फिलॉसफी एक तरह से कि एक कला के रूप में कि उससे जुड़े रहना है किसी भी तरह से, लेकिन आमतौर पर हम ये देखते हैं कि अधिकांश अभिनेता ऐसे होते हैं जो अपने किरदारों में बन जाते हैं। शुरुआत में उन्होंने जो किरदार किए तो उसी तरह के रोल बार बार मिलने लगते हैं। जैसे कभी कभी कुछ लोगों का मन में भी इस तरह से होता है कि पॉजिटिव किरदार ही मुझे निभाने, नेगेटिव कुछ नहीं करना है। लेकिन आपने कई तरह के रोल्स निभाए हैं, आपने नेगेटिव भी किए, पॉजिटिव भी किए, कॉमिक किरदार भी आपने किए, और फिर लार्जर देन लाइफ एक किरदार है, साईं बाबा का किरदार आपने निभाया। तो आपको अलग अलग तरह के किरदारों के लिए खुद ही ऑफर मिलते रहे या आपने कुछ इसके लिए कुछ किया खास? क्योंकि आमतौर पर कहते हैं कि टाइप कास्ट कर दिया जाता है और जैसा आपने निभाया वही निभाने के लिए बार बार कहा जाता है।
1: ये मेरा खुद का डिसीजन रहा हमेशा, क्योंकि मायका जैसा सक्सेसफुल शो करने के बाद जिसमें वीर खुराना का मैं किरदार निभा रहा था, वो बहुत लार्जर देन लाइफ, वो इतना हिट शो हो गया था और खासकर मेरी और शिल्पा शिंदे की जोड़ी, वीर सोनी की जोड़ी थी जो उसमें बहुत ज्यादा हिट हुई थी। उसके बाद मैं सेम चैनल पे एक और शो कर रहा था, हर घर कुछ कहता है
0: जी।
1: और उसमें भी मैं मुख्य भूमिका निभा रहा था, उसमें भी मैं हीरो ही था शो का, रति पांडे के साथ। और एज अ हीरो, एज अ चॉकलेट बॉय मैं ये दोनों शोज कर रहा था, ये कुछ दो ढाई साल तक चलता रहा
0: जी।
1: और इसके बाद मुझे इसी तरह के शोज ऑफर होते गए, जैसा कि आपने कहा कि टाइपकास्ट कर दिया जाता है एक्टर्स को। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम अगर यहां से हिल जाओगे, इस अपने हीरो वाले जोन से हट जाओगे तो कभी भी फिर तुम्हें हीरो नहीं माना जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, अगर मैं अलग अलग चीजों में एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा तो एज अ कलाकार मैं ग्रो कैसे करूंगा
0: जी।
1: अगर मैं म्यूजिक में हूं और अगर मैं अलग अलग जॉनर्स नहीं सीख पा रहा हूं और मैं एक ही जॉनर बजा रहा हूं तो, या एक ही जॉनर में सिर्फ मैं काम कर रहा हूं, अपनी कला को निखार रहा हूं, तो मैं ग्रो कैसे करूंगा? तो मेरा ये वॉलंटियरली डिसीजन था और मैंने उसके बाद नेगेटिव रोल चुना जो माँ था जी टीवी पे, और मुझे ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री ने मना कर दिया था कि तुम मतलब खुद अपना करियर अपने हाथों से खत्म कर रहे हो। लेकिन वो शो आने के बाद मैंने जब उसके ऊपर तैयारी की, मैंने खुद से जब उसके ऊपर काम किया तो कितना सराहा गया, और उसके बाद मुझे सिर्फ नेगेटिव रोल्स ऑफर होने लग गए। तो उसके बाद मैंने पुनर्विवाह किया और उसके बाद मैंने काफी सारे शोज नेगेटिव में किए, और मुझे ऐसा लगा कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव किरदार को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेरा खुद का मानना है जिंदगी में कि अच्छा बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इंसान को, लेकिन बुरा बनने के लिए बहुत एफर्ट है, बहुत एनर्जी ड्रेन करनी पड़ती है अपनी। तो वो मुझे मुश्किल लगा बहुत करना, और जब मुश्किल था तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगा।
0: और मुश्किल आमतौर पे इसलिए भी नेगेटिव किरदार कि आप जब इतने पॉजिटिव दिख रहे हैं और जीवन में इतने पॉजिटिव हैं तो फिर नेगेटिव करना तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
1: देखिए, मुझे लगता है एक्टर ना एक गिरगिट की तरह है, अगर वो अलग अलग रूप नहीं बदलेगा तो हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि कोई इंसान की स्किन में घुस के उसको पर्दे पर उतारना और लोगों को ये बताना कि ये कैरेक्टर रियल है।
0: जी,
1: अपने आप को ग्रो करने के लिए मुझे लगता है ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि बेधड़क होके, बिंदास होके रोल्स चुनने चाहिए, और इसी का नतीजा है कि मुझे लगता है आज मैं यहां तक पहुंचा। अगर मैं एक ही जैसी चीज कर रहा होता तो शायद मैं नेगेटिव रोल्स नहीं कर पाता, शायद मैं लापतागंज जैसा इतना बड़ा हिट शो एज अ कॉमेडी शो नहीं कर पाता, और फिर मुझे नेगेटिव से वापस साईं बाबा जैसा रोल करने का मौका मिलना, और आप सोचिए कि मेरी ऑडियंस कितनी मेरे साथ होगी
0: जी, वो स्वीकार करना बहुत
1: जरूरी है। उनकी वजह से मेरे करियर में अगर कोई सबसे ज्यादा किसी का क्रेडिट है वो भगवान
0: जी।
1: मैं मानता हूँ यूनिवर्स और मेरे ऑडियंस है, मेरे फैंस हैं, जिन्होंने हमेशा मेरे अतरंगे रोल्स की चॉइस को हमेशा साथ दिया, और मैं इसीलिए आज उनके साथ यहाँ पर बैठकर बात कर रहा हूँ।
0: तो जैसे आपको यकीन है कि आप अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, वैसे ऑडियंस को भी लगता है, आपके दर्शकों को भी लगता है कि नहीं हम देख सकते हैं इनको, और स्वीकार भी कर रहे हैं, वो बड़ी बात है।
1: उन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास किया कि मैं जो भी करूंगा मैं कभी भी मतलब उन्हें गलत नहीं साबित करूंगा।
0: और सबसे ज्यादा किस किरदार के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी?
1: साईं बाबा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है
0: जी।
1: लेकिन उनकी तरह दिखना और मानसिक तौर पर अपने आप को शून्य तक ले जाना, जहां आपके सामने कोई भी कैरेक्टर कुछ भी अगर बोल रहा है तो जिस तरह बाबा सबको सिर्फ एक स्माइल देकर सबको समझा देते थे, एक आम इंसान के लिए इतना काम और कंपोज रह के हर वक्त, चाहे जिंदगी में कोई भी तूफान आ रहा हो फिर भी उसका स्माइल रख के, मुस्कुराते हुए उसका समाधान पे ध्यान दे के, प्रकृति पे, ईश्वर पे विश्वास रख के उस पे काम करना और उसको सॉल्व करना और फिर भी लोगों को खुश रखना, ये बहुत मुश्किल काम था।

0: मानसिक तौर पे मुझे सबसे ज्यादा काम करना पड़ा
1: जी। तो इसके बाद कुछ निजी जीवन में कुछ बदलाव आए, क्योंकि कहते हैं पौराणिक किरदार हों या इस तरह के कोई किरदार हम निभाते हैं तो बहुत सा बदलाव आता है। आमतौर पे जिन भी अभिनेताओं ने इस तरह का किरदार निभाया, चाहे वो श्रीराम का किरदार हो, भीष्म का किरदार हो, इस तरह के जब भी किसी अभिनेता को ऐसे किरदार करने मिलते हैं, उनके निजी जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने मिलते हैं। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ बदलाव अपने अंदर देखने मिला?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि मैं साईं बाबा को मतलब अपने कॉलेज डेज से मानता आया हूँ और मैं उनके मंदिर जाया करता था और मैं उनको बहुत बहुत मानता आया हूँ। उनकी टीचिंग्स को, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनको मैं बहुत मानता हूँ, आज भी मानता हूँ। और इतने सालों के बाद आज एज एन एक्टर उनको जब पर्दे पे उतारने का मुझे मौका मिला तो मेरे लिए ये एक अनबिलीवेबल सा मौका था। और साई सच्चरित में पहले ही से ही पढ़ चुका था मैं, उनके बारे में बहुत पढ़ चुका था, और जब उन्हें पर्दे पे उतारने का मौका मिला और उनके जैसा कि मैं नंगे पैर चलता था, जिस तरह हम लोग शूट करते थे, जो हमारी सारी जो सेट हुआ करता था, उस तरह से जीने के बाद जो पर्सनल जिंदगी में इतनी सारी चेंजेस आई कि कितना हम्बल रहना है, कितना आपको शांत रहना है, जिंदगी में कुछ भी होता रहे लेकिन स्माइल रखते हुए ही उन चीजों को, आपको लाइफ को हैंडल करना, ये सीखने का बहुत अच्छा अनुभव हुआ।
1: तो चलिए इस समय एक अच्छा सा गीत सुन ले, आपकी पसंद का कोई गीत।
0: मैं चाहता हूँ कि मैं मन्ना डे जी का एक गाना सुनूं, जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
1: आनंद फिल्म से।
0: बिल्कुल
1: जी।

0: तो विनीत ये बताइए कि आमतौर पर एक्टर की जिंदगी तो बड़ी अच्छी मानी जाती है, सबको लगता है कि कितनी अच्छी तरह से वो अपना जीवन जी रहे हैं, कितने अच्छे मतलब बस आते हैं कुछ एक्टिंग करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आमतौर पर क्या क्या मुश्किलें किसी एक्टर को झेलनी पड़ती हैं, और कोई ऐसा मुश्किल सीन हो जिसके लिए या ऐसा कोई किरदार हो जिसे निभाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, और ज्यादा से ज्यादा एक साथ आपने कितने घंटों तक काम किया, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी शिफ्ट्स होती हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, एक डेली शो बनाने के लिए बहुत सारे लोग हम लोग मिलकर काम करते हैं, 100-150 लोग मिलकर एक एपिसोड तैयार करते हैं, और एक दिन में एक एपिसोड बनाना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। इसीलिए चाहे आप बीमार हो, चाहे कोई भी हालात हो, बारिश हो, तूफान हो, आपको शूटिंग करनी है और सेट पर पहुंचना ही है और उस एपिसोड को बनाना ही है ऑडियंस के लिए। तो मेरा मानना यह है कि जो भी मुंबई अपने सपनों को लेकर आता है एक्टर बनने के लिए, अगर वो शौकिया तौर पे आ रहा है तो उसका जाना तय है, क्योंकि आप अगर सिर्फ शौकिया तौर पे आ रहे हैं तो ये कोई भी आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आपका पैशन है और आपने चुन लिया है कि अब मुझे एक्टर ही बनना है, तो ये बात गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है कि आपने पूरी दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन आपने एक अडॉप्ट कर लिया है, एक ऐसा चुन लिया है जहां जो सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है
0: जी,
1: जब सबसे ज्यादा

0: इनसिक्योर है, जिसमें आपकी इनकम कभी आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके रहने का बंदोबस्त, आपके खाने का बंदोबस्त, आपकी बाकी किसी भी चीज का बंदोबस्त, आप एक रेगुलर जॉब पे नहीं होंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्रोफेशन है, तो जब आपको मौका मिलेगा आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं यहाँ। आप सिर्फ अपनी कला पर ध्यान दे सकते हैं, उसके अलावा बाकी किसी हालात पे आपका काबू नहीं है, क्योंकि आप रोल नहीं चुनते हो। कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई एक राइटर या प्रोड्यूसर्स बैठ के जब सोचते हैं कि हमारा कैरेक्टर इस एक्टर से जरूर मिलता है, तभी आपके पास वो मौका आपको मिलता है, और उस वक्त आप तैयार होने चाहिए। उस वक्त आपके तुनीर में बाण भी होने चाहिए और आपका धनुष जो है ना वो पूरा तैयार होना चाहिए। सो यही एक एक्टर का काम है, और बहुत ही मुश्किल एक प्रोफेशन है, लेकिन इसके लिए जुनून चाहिए, इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए पागलपन चाहिए, और इसके लिए खूब सारी मोहब्बत चाहिए कला के साथ, तभी आप सस्टेन कर पाते हैं।
1: तो आपने अपनी जो कला के प्रति मोहब्बत है उसे किस तरह से निभाया था? एक लंबा, बहुत लंबा शूट आपने किया था,
0: मेरा जो
1: कितने घंटों का
0: पॉपुलर शो था मायका, वहाँ कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि चैनल का ये डिसीजन था कि हमारी 90% कास्ट को एक ही दिन में उन लोगों ने पूरा रिप्लेस कर दिया था। तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सब लोग कास्ट पूरी अगले दिन से अवेलेबल नहीं थी और सिर्फ मैं था।
1: सीरियल का ऐसा सीन उन्होंने किया जिसमें ब्लास्ट के थ्रू इनका,
0: और उसके बाद कोई भी एक्टर अवेलेबल नहीं था और सिर्फ मैं था, और हमारे पास कोई भी एपिसोड टेलीकास्ट करने के लिए नहीं थे। हमारे ऊपर और चैनल के ऊपर बहुत प्रेशर था, और मैंने लगातार, मैंने बिना सूरज देखे, बिना सेट से बाहर आए, कम से कम 56 से 60 घंटे लगातार शूट किया था, क्योंकि तब सिर्फ मंडे टू थर्सडे ही एपिसोड्स टेलीकास्ट हुआ करते थे और 3 दिन का हमारे पास गैप हुआ करता था। जब तक हम लोग बिल्कुल, हमारे पास एक दो एपिसोड का बैग नहीं आ गया, तब तक मैं सेट से हिला नहीं, और फाइनली मैं बेहोश हो गया था सेट के ऊपर। और जब सब कुछ खत्म हो गया और मुझे बता दिया कि विनीत हमने ये कर लिया, हम अब सेफ हैं, तब मेरे मतलब पैर जैसे मतलब मैं गिर गया, और मुझे उठा के वो घर ड्रॉप कर दिया, और मैं कम से कम एक दो दिन तक नींद से उठा नहीं हूँ। तो ये बहुत,
1: तब तक बैंक खत्म हो गया होगा तो फिर वापस आ गए,
0: फिर ये 2 दिन में सोया, उसके बाद वापस से हम अपनी मैराथन में लग गए थे।
1: तो ये 60 घंटे, 56 से 60 घंटे का काम जो आपने किया, सुन के भी मुझे थोड़ी थकान सी होने लगी है।
0: सारी यूनिट परेशान हो गई थी कि कहीं कुछ और ही ना हो जाए, क्योंकि बहुत इमोशनल सीन्स थे, एक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ वो लाशें थी और मेरे मोनोलॉग्स थे, मैं रो रहा हूँ हर लाश को देखकर, उनकी पुरानी यादें ताजा कर रहा हूँ। सो बहुत ड्रेनिंग था, लेकिन वही है कि इसके लिए जब जुनून आपके दिल में, जब मोहब्बत होती है कला के लिए, तो एक्टर्स कैन गो टू एनी एक्सटेंट।
1: तो इसी जुनून को बताता हुआ कोई गीत अगर आप हमें बताना चाहें जो आपकी पसंद का, हम सुन ले सब।
0: जी बिल्कुल, मैं इस मौके पे तो एक ही गाना आपको सुनाना चाहता हूँ, सभी श्रोताओं को, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है।
1: तो चलिए, आप जिस तरह से सिकंदर की तरह काम कर रहे थे, तो आपके लिए सुनते हैं ये गीत।
0: बिल्कुल।

0: विनीत जी, आपने जैसे हमारी बात हो रही थी उसमें आपने कहा कि एक एक्टर का जो काम है वो स्टेबल जॉब नहीं है, पता नहीं है, सैलरी नहीं मिलती है कि हर महीने आपको सैलरी मिलेगी. जब आपके पास काम है तो आपके पास तब आपको पैसे मिलेंगे, वो भी शायद 2-3 महीने का एक गैप होता है उसमें मिलेंगे, और उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट शो आपको तुरंत मिल जाए, हो सकता है ना मिले. तो कितना मुश्किल है ये काम, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं, सबके होते हैं, नॉर्मल खर्चे भी होते हैं और एक्टर के तो एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, अपने ख्याल रखना पड़ता है अपना, अपने वार्डरोब का ख्याल रखना पड़ता है अलग तरह से. तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से मैनेज करना चाहिए? एक साथ में ये भी जोड़ना चाहेंगे कि अपने पैसों का सही तरीके से कैसा ख्याल रखना चाहिए किसी एक्टर को, क्योंकि कई बार आर्थिक तंगी आ जाती है अगर लंबा काम नहीं मिला बाय चांस.
1: ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज है जो आपने उठाई है, जो सारे एस्पायरिंग एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए. और यही चीज है जो उनको वो लिवरेज नहीं दे पाता, वो माइलेज नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो वापस अपने घर लौटकर चले जाते हैं. क्योंकि मुंबई कोई सस्ता शहर नहीं है, बहुत ही महंगा शहर है. और जो लोग घर से खूब सारे पैसे लेकर आते हैं वो भी कई बार मेरे ख्याल से बहुत आगे तक नहीं जा पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टैलेंट आपको साथ में उसको पॉलिश करते रहना जरूरी होता है, कि जैसे मैंने आपको बताया. लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ क्योंकि मुंबई बहुत ही चकाचौंध से भरा हुआ शहर है, यहाँ दिमाग खराब होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी चीजें भी हैं जहां पर आपका दिमाग भटक सकता है. लेकिन मुझे लगता है जब आप फोकस रहेंगे और जब आपको पता है कि आपको एक्टर ही बनना है, जो अब आपका शौक नहीं है, और अगर आप शहर आए हैं ये समझ के आ गए हैं कि ये एक चकाचौंध से भरा शहर है, तो जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है. चकाचौंध तो है, लेकिन वो चकाचौंध पाने के लिए उस एक्टर ने कितनी मेहनत की होती है, कितनी मुश्किलों से वो गुजरा होता है, वो लोगों को नहीं दिखता. जब वो पा चुका होता है और वही पाता है जो बहुत दिमाग से अपने फाइनेंसिस को मैनेज करते हुए चलता है. और ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये ज्यादातर लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे शाहरुख खान जैसे लोग हैं, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप पैसे जो है उनको बहुत ही ध्यान से रखिए, क्योंकि आपके पास जो आपकी बैंक बैलेंस होती है वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है. तो मुझे लगता है जितने भी एक्सपायरिंग एक्टर्स हैं उनको जब वो यहाँ आते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं, अपने टैलेंट पे काम करते हुए, जितना भी पैसा वो कमाते हैं वो हमेशा उनको सेव करके रखना चाहिए, ना कि आते ही चकाचौंध से भरे
0: खुश होके
1: क्लब्स में जाते हुए या पार्टीज में जाते हुए उस पे ना जाएं शुरू में. करें, लेकिन ये चीजें तब करें जब आपका एक बैंक बैलेंस आप मेंटेन कर लें, आपको पता हो कि आपके पास इतना है कि आप अपनी, क्योंकि हो सकता है कि एक टेलीविजन सीरियल किसी को मिला और वो शायद 2 महीने में या 3 महीने में बंद हो जाए. सोचा होगा कि साल भर चलेगा, लेकिन और उस साल भर का सोच के आपने अपने बड़े बड़े खर्चे उठा लिए, या आपने लग्जरी कार्स ले ली, या आपने बड़े बड़े घर ले लिए, और उसके बाद जब वो काम अचानक बंद हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. तो मुझे लगता है कैरिड अवे ना हो, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, फिजूल खर्ची ना करें, पहले अपने करियर पे ध्यान दें, एक स्टेबल करियर बनाएं. उसके बाद जब आप एक बार कमाना शुरू करेंगे, जब एक बार आपका करियर थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाएगा, आप अपने आप वो चकाचौंध जो है आप उसमें आप हिस्सा ले पाएंगे. और आपको तब ये गम या ये डर नहीं होगा कि अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा. सो ये बहुत जरूरी चीज है जो एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए.
0: जी, और जैसे कि आप इन दिनों टीवी फिल्म, ओटीटी, वर्टिकल या इंटरनेशनल फिल्म्स में भी आपने काम किया है, तो किस तरह का आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा, कौन सा आपको ज्यादा सरल लगा या सब एक जैसे ही आपको लगते हैं? और अब जो AI आ रहा है, AI की वजह से भी ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से एक्टर का काम या बहुत से काम जो हैं वो बड़ी आसानी से हो जा रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको क्या लगता है कि उसके फायदे ज्यादा हैं या कुछ नुकसान भी हो रहा है?
1: देखिए, मुझे

0: लगता है कि कोई नुकसान तब तक होगा एआई से जब तक लोग उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट नहीं करेंगे. अगर लोग उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे तो वो कभी भी किसी के लिए हार्मफुल नहीं होगा. वो हमारी ही सहूलियत के लिए बनाया गया है, हमारे ही काम को आसान करने के लिए बनाया गया है. ये वही बात है कि जब पहले चूल्हे पे खाना बनता था लेकिन उसके बाद एलपीजी आ गया और उसके बाद पहले माचिस से और किसी चीज से हमें चूल्हा जलाना पड़ता था, उसके बाद पहले गैस लाइटर आ गया और उसके बाद अब ऑटोमेटिक लाइटर आ गया. तो ये फर्क हमें देखना पड़ेगा कि जो लाइटर हमें मिला है उससे हम सिर्फ चूल्हा ही जलाएं, उससे हम जाके दुनिया को जलाना शुरू करते हैं. सो वो कोई भी जब इनोवेशन होती है या कोई भी जब नई चीज आती है, जहां उनका सदुपयोग किया जाए तब तक वो ह्यूमंस के लिए और बाकी अर्थ के लिए अच्छा रहेगा. जहां वो बुरे हाथों में लग गया है, जहां उसका दुरुपयोग स्टार्ट हुआ, वहां वो वरदान से अभिशाप बन जाता है.
1: जी,
0: यही प्रकृति का नियम है. तो मुझे लगता है बाकी तो जितने मीडियम्स हैं, जैसे वो फिल्म हो या टेलीविजन शोज हो या वर्टिकल्स हो या बाकी कोई भी और मीडियम हो, चाहे ऑनलाइन हो या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, देखिए सब लोग मिलके एक ही चीज कर रहे हैं. वही राइटर है जो कहानी एक बना रहा है, उसे वही डायरेक्टर जो है उसे पूरा बुन रहा है. कुछ यूनिट मिलके या सिर्फ एक इंसान मिलके आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बना के एक ऐसी कहानी बनाने का सहूलियत रखते हैं कि जिसके पास जो भी थॉट है वो उसको एक कहानी के माध्यम से, अगर वो अकेला भी होगा तो डिफरेंट डिफरेंट रोल खुद ही करके वो उस कहानी को बता सकता है. तो मुझे लगता है कि बनाने का तरीका एक ही है, बस उसका फॉर्मेट अलग है. कभी कैमरा सीधा रख दिया जाता है, कभी कैमरा वर्टिकली रख दिया जाता है, कभी हॉरिजॉन्टली रख दिया जाता है, लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम है. और मुझे लगता है गुड स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए. हम अपनी स्टोरीज के माध्यम से, हम अपने रेडियो के माध्यम से जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सके, उनको एंटरटेन तो करना जरूरी हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन एंटरटेन करते हुए उन्हें एक अच्छी दिशा दिखाना भी हमारी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी जिम्मेदारी बनती है. मुझे लगता है कि जितने ज्यादा मीडियम्स होंगे उतने ज्यादा कलाकार होंगे. कलाकार बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो मुझे लगता है जितने ज्यादा कलाकार इस दुनिया में होंगे उतना ज्यादा प्यार मुझे लगता है फैलेगा.
1: तो यहाँ जब ऐसी बात हो रही है तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया या भारतीय नागरिक होने के नाते आपने एक बड़ा ही गर्व वाला काम हमारे लिए किया है, जब आपने एक इंटरनेशनल फिल्म में काम किया. ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स की बात हम कर रहे हैं.
0: जी हाँ.
1: तो इसमें भी आपका किरदार तो क्या है वो आप हमें बताएंगे ही, लेकिन ये भी हम जानना चाह रहे हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो भारतीय जो ये टीवी सीरीज है इन सबका क्या क्रेज है, क्या लोकप्रियता है?
0: बहुत ज्यादा लोकप्रियता है हमारे टेलीविजन शोज की. और मैं जब भी आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, वो चाहे इंडोनेशिया हो, वो थाईलैंड हो, जहां भी हमारे इंडियन टेलीविजन शोज टेलीकास्ट होते हैं, वहां हमारे हिंदुस्तान के कलाकारों को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है, खासकर इंडोनेशिया में, कि उनका प्यार देखकर मतलब इमोशनल हो जाता हूं मैं जब भी यू नो मैं वहां जाता हूं. और खासकर अभी जिस फिल्म की आपने बात की ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, वो अभी 12 जून को रिलीज हुई. उसकी निर्माता निकोलेट एंटिग्वे हैं और उसकी जो निर्देशक हैं वो मिल्ड्रेड ओको हैं, जो यूएस की काफी जानी मानी डायरेक्टर हैं. इसकी स्टारकास्ट बहुत विशाल है. अफ्रीका के बहुत जाने माने सब लेजेंडरी एक्टर्स हैं इसमें. एक इंडो नाइजीरियन शादी वेडिंग पे एक फिल्म है जिसमें मैं हिंदुस्तानी लड़का हूं जो एक नाइजीरियन लड़की से शादी करना चाहता हूं, लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट है कि धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब वो फिल्म यहां रिलीज होगी, क्योंकि वो अफ्रीका में बहुत अच्छा कर रही है, 28th ऑफ अगस्त को वो यूके में रिलीज हो रही है और उसके बाद वो ह्यूस्टन में रिलीज हो रही है, तो हमारे हिंदुस्तान के लिए भी राइट्स के लिए वो लोग काफी कोशिश कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि यहाँ आए. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था. और वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हमारा वहां ग्रैंड प्रीमियर हुआ था जिसमें वहां की एम्बेसी के, हमारी इंडियन एम्बेसी के वहां पे ऑफिसर्स थे और सब लोग थे, हमारी इंडियन कल्चरल मिनिस्ट्री से लोग थे, उनको भी बहुत अच्छी लगी फिल्म. और इंडिया को रिप्रेजेंट करके बहुत ही अच्छा और गर्व फील हुआ. और मुझे इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील होता है, क्योंकि मैं कैसे बताऊं आपको कि मेरे लिए कितनी एक बड़ी बात है कि मैं एक बहुत ही छोटे से इंडिया के नॉर्थ से, कश्मीर से उठा हुआ एक कश्मीरी पंडित लड़का, जो रातों रात जिसने अपना सब कुछ खो दिया और उसकी एक जर्नी एज एन एक्टर, और आज एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना और उनके साथ काम करना और उनको इंडियन कल्चर से अवगत कराना, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गौरव की बात थी मेरे लिए. और वो लोग बहुत खुश थे. मजे की बात ये थी कि जब मैं नाइजीरिया गया, और नाइजीरिया इतना दूर है यहाँ से, और जब मैं वहां, जब मेरी प्रोड्यूसर मुझे एक पासी में एक रेस्टोरेंट में, लागोस में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहां खाना खिलाने के लिए मुझे लेकर गई, तो मेरी प्रोड्यूसर इतना आश्चर्यचकित रह गई देख के कि वहां का जो स्टाफ था जो सब खाना वगैरह बांट रहे थे, वहां पर यहाँ की एक चैनल वहां पर टेलीकास्ट होती है जिसपे सारे के सारे शोज इंडियन शोज आते हैं।

0: और मेरा एक बहुत ही पॉपुलर शो पुनर्विवाह वहां पर टेलीकास्ट होता है और जब मैं वहां गया और वो इतना पॉपुलर शो है वहां कि जब मैं इस रेस्टोरेंट में गया तो लोगों ने मुझे मेरे उस किरदार का नाम उस शो में प्रशांत है
1: जी,
0: तो मुझे लोगों ने प्रशांत प्रशांत कहकर मतलब उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मैं
1: वहां कैसे
0: इंडियन एक्टर वहां कैसे हूं। पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, अब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में मेरी प्रोड्यूसर को पूछा और मेरी प्रोड्यूसर वॉज शॉक्ड कि ये कैसे है? मतलब यहाँ के लोकल लोग तुम्हें पहचान रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत ही मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे इंडियन शोज जो है वो कहाँ कहाँ तक फेमस नहीं है।
1: तो फैंस आपके लिए ऐसा कुछ करते हैं, कई बार और भी करते होंगे कुछ ना कुछ, आपके लिए फैन मोमेंट कब हुआ किसी ऐसे एक्टर से मिलना जिससे आप मिलने चाहते हो या जिन्हें आप एडमायर करते हो हमेशा, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी?
0: जी हाँ, मैं हमारी एक बहुत ही फेमस मीडिया कंपनी है, मैं उनकी पार्टी में था, उनकी एक पार्टी थी, एनुअल पार्टी थी उनकी, और वहाँ पहली बार मैंने सलमान खान को देखा और बहुत ही बड़ा मोमेंट था मेरी लाइफ का। और उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा एंड मैंने सिर्फ उनको एक हेलो का जेस्चर किया एंड सलमान खान बीइंग सलमान खान उन्होंने भी मुझे वापस से एक एक ग्रीटिंग किया, एक इशारा किया एंड दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट। और एक मोमेंट जो मेरी लाइफ टाइम का मेरा सबसे अच्छा मोमेंट रहेगा, मैं राजेश खन्ना साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन से, काका का मैं मतलब बहुत फैन रहा हूँ, बहुत बड़ा फैन, और मेरे लिए उनको सिर्फ देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था। लेकिन मुझे मौका मिला था, मैं एक दूरदर्शन का एक शो मुझे ऑफर हुआ था, वो पायलट बना रहे थे बेसिकली
1: जी।
0: और मैं जब सेट पे पहुंचा तो मुझे पता नहीं था कि इतने सारे लोग भीड़ बनाकर एक रूम के बाहर क्यों बैठे हुए हैं और कोई खड़ा है कोई कुछ है। तो मैं गया सेट पे शूट करने के लिए, तो मेरी आदत है कि मैं सेट पे डायरेक्ट मेकअप रूम में नहीं जाता, पहले पूरी यूनिट से मिलता हूँ। सो मैं पूरा यूनिट में जब गया, मैंने देखा कि इतनी भीड़ क्यों है। जैसे ही मैं पहुंचा और सबने मुझे देखा तो बोला आइए, तो सब थोड़ा थोड़ा हट गए और मैंने देखा कि रूम में गोल्ड कलर के सिल्क की धोती और कुर्ते में काका बैठे हुए हैं एंड ही वॉज द पार्ट ऑफ द शो।
1: जी,
0: he was the part of the show, he was playing my dad in that show, in that pilot. When I saw him, mere liye wo matlab mera ek mera freeze ho gaya tha ki jinko main itna manta hu aaj main unke samne khada hu. और मैं गया और मैं सीधा उनके, वो बैठे हुए थे और मैं सीधा जाके उनके घुटने के पास बैठ गया और मैंने अपने हाथ उनके घुटने पे रखे और मैंने कहा काका मतलब मेरे लिए ये एक मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मैं अचीवमेंट मानूंगा कि मैंने आपको देखा एंड आई वॉज वेरी इमोशनल दैट टाइम, मतलब मेरे आंसू भर आ गए थे काका को देखकर।
1: तो यहाँ फिर राजेश खन्ना का कोई गीत सुन ले?
0: राजेश खन्ना का आप कोई भी अगर आप गीत चला देंगी मैं उसको सुनूंगा, लेकिन एक गाना है उनका जो मैं गाता भी बहुत था, चिंगारी कोई भड़के,
1: तो वही सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी।

0: ऐसी फिल्में भी होंगी जिनमें आपको ऐसा लगता होगा कि ये फिल्म मुझे मिलनी चाहिए थी, मतलब पुरानी अगर आपने देखी हो जब आप एक्टर नहीं रहे हो या बनना चाहते रहे.
1: बावर्ची
0: बावर्ची
1: बावर्ची एनी डे. मुझे कोई भी प्रोड्यूसर मुझे कभी भी बोलेंगे कि बावर्ची फिल्म बना रहा हूँ और मेरे पास बजट ही नहीं है, मैं उनकी फिल्म जो है मैं फ्री में कर सकता हूँ. लेकिन वो एग्जैक्टली बावर्ची जैसी ही होनी चाहिए स्क्रिप्ट. तो मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, खासकर काका ने जो उसमें परफॉर्मेंस किया और जिस तरह से काम किया काका ने. कुछ भी करते थे वो और बहुत अच्छा लगता था. एनी टाइप ऑफ रोल, हर किसी चीज में ढल जाते थे. वो लाइवली से लाइवली कैरेक्टर हो, चाहे वो आनंद का हो या फिर बावर्ची जैसा कोई हो, या फिर इवन जब वो थोड़े से बाद में मच्योर रोल करने लगे तो अवतार जो उनकी फिल्म थी वो कितनी घर घर में देखी जाती थी कि देखो कैसे अपना.
0: हाँ, बार बार देखी जाती थी बागबान से पहले.
1: हाँ, बागबान से पहले अगर कोई फिल्म कल्ट फिल्म है इस परिवार के ऊपर तो वो अवतार ही है
0: जी. और जब वो हंसाना चाहे तो वो हंसा लेते थे, जब वो रुलाना चाहे तो अचानक ही अगले सीन में वो रुला सकते हैं.
1: हाँ, बिल्कुल,
0: कुछ भी कर सकते हैं ऐसा लगता है.
1: उनका स्टाइल जो हुआ करता था, अरे पुष्पा, यू नो जो उनका स्टाइल था, इट वाज. वो कभी कहा जाता ना कि सबसे पहले और सबसे आखिरी सुपर डुपर बिग स्टार
0: जी. उनका एक अलग ही चार्म था. नमक हलाल देख लीजिए आप, उसमें वो आते हैं कुछ और बन के आते हैं, फिर उनके किरदार के साथ हम पूरी फिल्म में चले जाते हैं.
1: मुझे लगता है राजेश खन्ना जी, देवानंद साहब, अमिताभ बच्चन जी, दिलीप कुमार साहब, ये मुझे लगता है इन जैसे ना कभी कोई होगा ना कभी कोई था.
0: वो एक मील का पत्थर है, उनको हम देख के आगे बढ़ते हैं. उनको पता चलता है कि सही डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, क्या क्या किया जा सकता है.
1: ये सब असली महानायक है हमारे इंडस्ट्री के, जिनको देख देख के हम सब बड़े हुए हैं.
0: तो एक अगर एक्टर के तौर पर हम देखें तो एक तो जीवन होता है जो आप पर्दे के सामने निभा रहे हैं, एक जीवन है जो आप का अपना निजी जीवन है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि निजी जीवन में बहुत सी कुछ परेशानियां चल रही हैं या कुछ अलग भाव है निजी जीवन का उस वक्त, लेकिन पर्दे पर तो आपको कुछ और ही निभाना है. तो निजी जीवन और करियर को अलग अलग रखना कैसे संभव है? क्या करते हैं आप, कैसे डील करते हैं कि हो सकता है कि कुछ पर्सनल लॉसेस हमने झेल रहे हो उस वक्त में, लेकिन आगे तो हमें जाके वहां कॉमेडी करनी है, तो कैसे वो दोनों चीजें कैसे अलग करते हैं?
1: बहुत मुश्किल होता है कई बार. लेकिन मैं पर्सनली बहुत इस चीज पे मैंने बहुत कोशिश की है और इस चीज पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो अगर इस चीज को करें तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस में बहुत अच्छा फायदा होने हो सकता है और थोड़ी शायद उनको मदद मिल जाए
0: जी.
1: वो ये कि मैंने हमेशा से अपना एक प्रिंसिपल, एक असूल बनाया कि विनीत रैना जो है वो, उसे जब कॉल टाइम मिलता है कि आप 9 बजे सेट पर पहुंचिए, तो जब तक उसकी आंख खुलती है वो तब तक नॉर्मल एक विनीत रैना है
0: जी.
1: और जैसे ही वो तैयार होना शुरू करता है और अपने करियर के इन 20 सालों से ज्यादा अपने करियर में मैं कभी भी सेट पे लेट नहीं पहुंचा हूं
0: जी.
1: मैं हमेशा 5 मिनट या 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूं हमेशा. तो जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूं वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान एक जन्म लेता है जिसको सेट पे जाना है. वो एक एक्टर, एक कलाकार विनीत रैना है. वो जैसे ही सेट पे पहुंचता है वो मेकअप, जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है. उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है
0: जी.
1: और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और वापस गाड़ी में बैठ जाता है, और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और गाड़ी में बैठता है अपने घर जाने के लिए, वो वापस वो विनीत रैना है
0: जी.
1: जो अपने वापस परिवार के पास जा रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और वो अपने सेट से ना कुछ घर लेकर जा रहा है और ना वो अपने घर से कुछ सेट पर लेकर जा रहा है. ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसको अगर अपनी जिंदगी का उसूल बनाया जाए तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिल सकती है और बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल सकती है, जहां आप अपनी निजी जिंदगी को और अपनी पर्दे वाली जिंदगी को, या आप कहीं भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या आप सरहद पे काम कर रहे हैं, ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है. और इस स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन को अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, और ये हर इंसान के अंदर है, सिर्फ इतना है कि आप उसको अपने साथ कैरी करते हैं. मुझे लगता है अगर वो हर इंसान अपने अंदर एक्टिवेट कर ले तो ये किसी के लिए भी मुनासिब है.
0: फिर ये इतना संभव, इतना मतलब आसान नहीं है जितनी आसानी से आप बता रहे हैं. शायद इतने साल से काम करते करते
1: मैं कहूंगा कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं, लेकिन हमेशा ये चीज काम नहीं आती. कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं. मुझे याद है जब मैं अपने मायका सीरियल की शूटिंग कर रहा था और मैं अपने शॉट के बीच में था, और मुझे बार बार घर से कॉल आ रहा था, मेरी मॉम का कॉल आ रहा था, मेरे भैया का कॉल आ रहा था. तो क्योंकि मेरा फोन वाइब्रेशन पे बज रहा था और मैं उठा नहीं पा रहा था, तो जैसे ही मैंने अपना शॉट दिया और मैंने इमीडिएटली फोन निकाला तो उस पर काफी सारे मिस कॉल्स थे. तो तो मैं

0: मैंने जब घर पे कॉल किया तो मुझे पता चला कि मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है, और मैं बिल्कुल सुन्न रह गया। और उनको सर्जरी के लिए ले जाया जाने वाला था। तो मेरे लिए वो ऐसा एक पल था जहां पर मैं सब भूल गया, और मैं कम से कम 15-20 मिनट तक मैंने अपने प्रोडक्शन को बोला कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए,
1: जी
0: और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया, अपने आप को काम एंड कंपोज किया, पूरे दिन का काम खत्म किया, सीन पूरा खत्म करके मैं अपने मेकअप रूम में गया, मैंने थोड़ा ब्रेक लेकर अपने घर वालों से बात की, मैंने पूरा जितने दिन तक हमारा वापस बैंक नहीं बनते एपिसोड्स, तब तक मैंने उन दिनों तक काम किया, काम खत्म किया, तब तक मेरे डैड को एडमिट कर चुके थे, वो सब हुआ, और उसके बाद ही मैं पहुंच पाया। तो ये सब सैक्रिफाइसेस होते हैं जो इंसान करता है, तब ये स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन काम नहीं आता। बट मुझे लगता है कि ज्यादातर जो ऐसे ओकेजन्स लाइफ में हो, तो घर का काम अपने ऑफिस में ना लिया जाए, और
1: जी
0: ऑफिस का काम जो है या अपने काम का काम जो है वो घर पे ना लिया जाए, तो बैलेंस
1: एक
0: मेंटेन करना
1: बैलेंस,
0: आसान रहता
1: जी,
0: है।
1: और एक जिम्मेदारी भी समझनी जरूरी है कि हम जिस काम के लिए रुके हैं तो उनको किस तरह से हम निभाएं। तो अब आपकी पसंद का एक गीत सुन लें, क्योंकि ये भी तो हमारा ही काम है।
0: जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ एक चांदनी फिल्म का जो चांदनी टाइटल ट्रैक है वो सुनाया जाए,
1: ठीक
0: क्योंकि
1: है,
0: इससे जुड़ी एक कहानी है, मैं आपको बताऊंगा।
1: बिल्कुल।
0: चांदनी

0: तो विनीत जी, गाना तो हमने सुन लिया, लेकिन आपने जो इतना सस्पेंस बना रखा है कि कहानी क्या बताने वाले आप इससे जुड़ी हुई?
1: तो एक मैं जब बहुत छोटा था तो एक बहुत ही सुंदर सी एक लड़की रहती थी हमारे घर के पास, और कहते हैं ना चाइल्डहुड क्रश होता है
0: जी।
1: कि आप किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कि वो एक बचपना होता है, वो आप किसी को आप, और वो बाकी के बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाया करती थी वो, और वो शायद कुछ स्कूल में पढ़ती थी, मैं बहुत छोटा था
0: जी।
1: तो ऐसा लगता था तब कि हमारे स्कूल में जितनी भी टीचर्स हों वो ऐसे ही हों, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से सारे बच्चों को पढ़ाती थी।
0: जी।
1: और ये जो लड़की थी जो ट्यूशंस लेके सबको पढ़ाती थी, ये बहुत कभी किसी बच्चे को नहीं डांटती थी, तो मैंने उनको देखता रहता था। उनका नाम चांदनी था
0: जी।
1: और वो अक्सर अपने घर में यही इसी फिल्म के, चांदनी फिल्म के ही गाने अपने घर में चलाया करती थी। तो जैसे ही वो गाने बंद होते थे तो पता चलता था कि वहां ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो गई, जैसे ही गाने दोबारा चलना स्टार्ट होते थे तो फिर ऐसा समझ में आता था सबको कि सारी क्लासेस बंद हो चुकी हैं। तो ये रिपीटेड हम सुनते थे, तो इसीलिए मुझे ये गाना बहुत याद
0: की
1: है।
0: उन यादों तक जाता है गाना।
1: जी हाँ।
0: तो आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है, बचपन की बातें तो आमतौर पे सबको याद रहती है, लेकिन स्क्रिप्ट्स कैसे याद रखते हैं, संवाद कितनी जल्दी याद कर लेते हैं, क्या करते हैं उसके लिए?
1: मैंने प्रैक्टिस की है इसके लिए, स्क्रिप्ट याद करने की, और मैं बहुत, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, तो मुझे, मैं ये बहुत जिम्मेदारी एज एन एक्टर समझता हूँ कि जो एक लेखक ने जो स्क्रिप्ट पे उतारा है, मैं एज एन एक्टर उसके साथ बहुत ज्यादा चेंजेस ना करूं, अनलेस एंड अंटिल इट इज रिक्वायर्ड, जब तक कि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं खुद से नहीं वो करता, हमेशा अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लेखक के साथ और निर्देशक के साथ डिस्कशन करने के बाद ही मैं उसको चेंज करता हूं। तो मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि मेरी जितनी भी लाइन्स हों वो मैं पूरी बाय हार्ट याद करूं, और याद करने से पहले मैं पहले उनको इतनी बार पढ़ता हूं जब तक कि मैं वही ना बन जाऊं जो ये लाइन्स बोल रहा है।
0: जी।
1: मैं विनीत बन के उनको कभी भी नहीं याद कर पाता। जैसे मैं जब साईं बाबा शो भी कर रहा था तो शिरडी वाले साईं बाबा की जो स्क्रिप्ट थी उसमें हमारी इंस्ट्रक्शंस थी कि जो स्क्रिप्ट में लिखा गया है बहुत ही रिसर्च करके सब कुछ लिखा गया था, और बहुत ही जिम्मेदारी वाला कैरेक्टर है और बहुत जिम्मेदारी वाली एक कहानी है, तो हम लोग ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, तो बड़े बड़े मोनोलॉग्स होते थे जो मुझे बोलने पड़ते थे। जब तक मैं उनको फील ना करूं कि मैं एक्चुअली लोगों को ये चीज बोल रहा हूं, वो याद करके नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि मैं अपने डायलॉग्स को पूरा फील करके उसको अपने अंदर याद करने के बजाय उसको एज ए कन्वर्सेशन अपने अंदर पूरा घोल लूं, फिर वो नेचुरली अपने आप निकल जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप फिर वही बन जाते हैं। और आप एक्टर के अलावा प्रोफेशनल ट्रेंड डिस्क जॉकी भी हैं, डीजे भी हैं।
1: जी
0: तो अगर आपकी पसंद के कुछ गाने या ट्रैक आपको मिक्स करने कहा जाए तो वो कौन से गीत हो सकते हैं?
1: मुझे लगता है कि हमारे आरडी बर्मन जो थे उनके ट्रैक्स रिमिक्स करना मतलब हर डीजे का मुझे लगता है सपना भी रहता है और एंजॉय भी करता है हर डीजे। उनके जितने भी ट्रैक्स हैं, आप उनके कितने भी पुराने गाने देख लीजिए, आइटम नंबर्स और तड़कते हुए भड़कते हुए गाने, उन्होंने ही यू नो डिस्को और इस तरह के गाने, एक आर डी बर्मन साहब और उनके बाद बप्पी लहरी, इनके गाने जितने भी हम चाहें रिमिक्स करना चाहें हम कर सकते हैं। और म्यूजिक से मेरा बहुत ज्यादा लगाव है, इसलिए इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी मैंने डीजेइंग चूज किया और मैं गया, मैंने प्रॉपरली उसकी क्लासेस ली, मैं जाया करता था और मेरे पास प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट है, और मैंने कुछ गिग्स भी किए क्लब्स में जाके, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं उसको प्रोफेशनली या बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, लेकिन अब शायद सोशल मीडिया पे मैं कुछ वीडियोस डालूं। लेकिन अगर मुझे रिमिक्स करना हो तो मैं यार बिना चैन कहां रे उसको 100% रिमिक्स करना चाहूंगा।
0: तो वही गीत यहां सुन भी लेते हैं हम।
1: बिल्कुल।

0: तो विनीत जी, आपके बारे में इतना कुछ हमने जाना और इतना कुछ आपने अपने बताया अपने बारे में, बस अगर हमारे श्रोताओं के लिए और आपके दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो क्या होगा, वो क्या संदेश होगा उनके लिए?
1: मैं मेरे श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि आज अगर मैं अपने आप पर, अपने सपनों पर विश्वास करते हुए, अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के उसको सुनते हुए अगर उसकी दूसरी तरफ आकर बैठ सकता हूं, तो जिंदगी में कहीं पर भी कोई भी मुझे अगर सुन रहा है, तो मैं उससे यही कहना चाहता हूं कि अपने ऊपर और अपने टैलेंट के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा करके कदम आगे बढ़ाते रहिए। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप भी

0: शायद ऐसे ही रेडियो के इस तरफ होंगे और इसी तरह लोगों को शायद इंस्पायर कर रहे होंगे और अपने आप पर विश्वास करने की उनको प्रोत्साहन दे रहे होंगे और एनकरेज कर रहे होंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने ये बात कही विनीत जी। आपके भविष्य के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, और उम्मीद है कि हम आपसे मिलते रहेंगे आपके किरदारों के माध्यम से भी और निजी जीवन में भी।
0: धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैंने श्रोताओं से बात की, बहुत मजा आया और दोबारा आना चाहूंगा और गाने सुनने के लिए और लोगों से बात करने के लिए। धन्यवाद।
1: धन्यवाद विनीत जी।
2: अभिनेता विनीत रैना से नेहा शर्मा की बातचीत अभी आपने सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी हैं सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी।
1: सब सबका कहानी लिटरेचर, वेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी। हाँ, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।